0: এই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এতিয়া ক্ৰমে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি শুনিবলৈ পাব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই মুকেশ কুমাৰ বল। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी।

0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
2: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
0: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. The legislation also allows the state governments to extend funding from the corporation to any entity engaged in cooperative development. The Parliament has also passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. Both Lok Sabha and Rajya Sabha gave their approval for referring the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee for further scrutiny. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Parliamentary Affairs.

0: कड़ा बोलियो ते कोई।
1: मेरे प्रिय असमवासियों, नमस्कार। तिरंगा हमारी शान, हमारा मान और हमारी पहचान है। यह भारत की एकता, अखंडता, स्वाभिमान और गौरव का प्रतीक है। तिरंगे में हमारे राष्ट्र के संकल्प और उज्जवल भविष्य की भावना निहित है। इसमें हमारे असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या, संघर्ष और बलिदान की अमर गाथाएं समाहित हैं। हमारा तिरंगा हमें माँ भारती के लिए समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मैं असम के सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि आप हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बने और अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रतिबद्धता व्यक्त करें। धन्यवाद। जय हिंद।
0: जोरहाट जिला तितापुर उन्नयन खंड सौजन्य काली এই উপলক্ষে দুচকীয়া বাহন সমদল উলিওৱা হয়। মৰিগাঁও জিলাত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ দ্বাৰা উলিওৱা স্কুটি ৰেলীত ভালেসংখ্যক মহিলাই অংশগ্ৰহণ কৰে। মৰিগাঁও জিলা আয়ুক্ত সৃষ্টি সিঙে এই কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ কৰে। সমদলত জিলাখনৰ বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰে। বন্দে মাতৰমৰ 150 বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা আৰু হৰ ঘৰ তিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত কালি এখন বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয়। জিলা আয়ুক্ত বিক্ৰম কৈৰীয়ে মুকলি কৰা এই প্ৰদৰ্শনীত সকলোৱে সমবেতভাৱে বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰে। প্ৰদৰ্শনী চাবৰ বাবে অহা লোকসকলৰ বাবে চেলফি পইণ্টো মুকলি কৰা হয়। কাছাৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিলচৰতো কালি তিৰংগা সমদল উলিওৱা হয়। ইয়াৰ অংশ হিচাপে গান্ধীবাগ উদ্যানত সমবেত কণ্ঠত বন্দে মাতৰম পৰিৱেশন কৰা হয়। জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ উপৰিও NCC, NSS, অসম ৰাজ্যিক গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযান, নাগৰিক সংগঠন, জিলা ক্ৰীড়া বিভাগ আৰু অন্যান্য বিভাগৰ প্ৰতিনিধিসকলে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। উজনি অসমত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানত 1000 কোটিৰো অধিক টকাৰ ক্ষতি হৈছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে। দিছপুৰত কালি এখন সংবাদমেলত শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাত বানত হোৱা ক্ষয় ক্ষতি আৰু চৰকাৰে লোৱা পদক্ষেপৰ সবিশেষ সদৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউক নতুন ৰূপত সজাই তোলাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে বানত সৰ্বাধিক ক্ষতি হোৱা নেপালীখুটি, মাজগাঁও, বামুণপুখুৰী, কমলাবস্তি এলেকাত প্ৰভাৱিত লোকসকলক দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনিৰ জৰিয়তে সহায় কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। তেওঁ লগতে বৃহৎ পৰিমাণৰ গোধনৰ ক্ষতি হোৱা অঞ্চলসমূহত দুগ্ধ উৎপাদন কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ পৰিকল্পনা লোৱা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি পুৱা 9 বজাত শুনিবলৈ পাব।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर। सूर्य घर।
6: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 1-144-16 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरलीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा

0: सभा में पेश किया।
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
0: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियू ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने ये कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
2: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
3: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
4: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
5: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग

0: 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गाँव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
3: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक है, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुंच गया है।
4: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरल में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
5: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा। वायुसेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलू मॉल में और एजी माला नेवल अकेडमी बैंड कणूर के थाजे चौबा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
6: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
7: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है।

0: लोक सत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है। रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने, बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें, स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल रेफर्ड टू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर फर्दर स्क्रूटनी। कलकत्ता हाई कोर्ट कैंसल्स ऑल ओबीसी सर्टिफिकेट्स इशूड अंडर रिवाइज्ड रूल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रीवियस तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट इन वेस्ट बंगाल। पंजाब फार्मेसी ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट स्टेड बाय हाई कोर्ट ओवर एलिगेशंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग। IMD predicts heavy rainfall in Odisha and Gangetic West Bengal due to formation of low pressure area over North Bay of Bengal. More than 30 civilians, including women and children, killed in Pakistani airstrikes in Surab district of Balochistan. And in cricket, BCCI confirms India versus Afghanistan T20 international series in September. And now the news in detail. Both Houses of Parliament have given their approval to refer the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill 2026 to the Joint Parliamentary Committee, JPC, for further scrutiny. The bill aims to further amend the Foreign Contribution Regulation Act 2010. The objective of the bill is to make the use of foreign contributions more transparent and accountable. Minister of State for Home Nityanand Rai moved a motion in the Lok Sabha to refer the bill to a JPC comprising members of both the houses for wider consultations. The committee will consist of 21 members from the Lok Sabha nominated by the Speaker and 10 members from the Rajya Sabha nominated by the Chairman. The committee will submit its report to this House by the last day of the first week of the winter session. The Rajya Sabha also approved the motion to nominate 10 members from its side to the Joint Committee for consideration of the FCRA Amendment Bill 2026. Today is the last day of the monsoon session of Parliament. The

0: ইংৰাজীত বাতৰি আৰু 12:10ৰ পৰা সৈন্যবাহিনীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰচাৰিত অনুষ্ঠানসমূহ দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
2: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद यह आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर्ड टियन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल

ये आकाशवाणी कहाँ टीका प्रागज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्स ऑन एयर फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्स पर। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए आज का प्रसारण। सैनिक भाइयों, मैं त्रिनयनी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के प्रसारण में।

हम अब से कुछ ही देर में शुरू करेंगे मधुर गीतों का मनभावन सफर, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। अब से कुछ ही देर में हम लेकर आएंगे पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत, 12:30 पर आज का गीत, 12:38 पर कार्यक्रम साज और आवाज, 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम स्वर छाया, 1:40 पर कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत, दिन के 2 मिड डे न्यूज और 2:15 से दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद दिन के 2:30 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम गीत रंगीले। इन्हीं कार्यक्रमों के साथ आज के प्रसारण का अंत होगा दिन के 3:00। तो ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

प्रस्तुत है आज का पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है दोस्ताना फिल्म से विशाल ददलानी की आवाज में।

सैनिक भाइयों, आइए सुनते हैं अगला गीत। कार्यक्रम का अगला गीत है परिणीता फिल्म से सोनू निगम और श्रेय घोषाल के आवाजों में।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आज का गीत। आइए सुनते हैं ये गीत फजा फिल्म से। गीत के बोल है महबूब के, संगीत है अनु मलिक के और आवाज है सोनू निगम और अलका याग्निक के।

हमारा अगला कार्यक्रम है साज और आवाज, लेकिन कार्यक्रम के शुरू होने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल शुक्रवार है, रोजाना की तरह कल के प्रसारण का आगाज होगा 12:10 पर। पहला कार्यक्रम फिल्म संगीत का वक्त होगा 12:12। 12:30 पर दैनिक कार्यक्रम आज का गीत। 12:38 पर बंदगी के गीत और भजन। 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल केंद्र से।

समाचार के बाद 1:10 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम सबरंग, 1:40 पर कार्यक्रम तरन्नुम, दिन के 2 बजे मिडडे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

समाचार के बाद 2:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे कल के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीतिका। इन कार्यक्रमों के साथ कल के प्रसारण का समापन होगा 3 बजे। तो ये थी कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की अग्रिम जानकारी।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 1035 किलोहर्ट्ज़ ऑडियो एंड फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम साज और आवाज। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत की धुन को।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर। सैनिक भाइयों, हम आपको बता दें कि अब से लेकर 1:40 तक हमारा ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी के डिब्रूगढ़ केंद्र से भी सुन सकते हैं 529.1 मीटर पर।

अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर छाया। कहते हैं इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। चेहरा तो दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन दिल, दिल को तो महसूस किया जाता है।

कभी कभी सोचती हूँ, आखिर दिल इतना खूबसूरत क्यों होता है? शायद इसलिए कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें आँखों से नहीं, दिल से दिखाई देती है। प्यार या मोहब्बत इन्हीं में से तो है।

बेताब दिल के धड़कनों को कौन समझे, खामोश मोहब्बत की बातों को कौन समझे। जिसे चाहा है हमने टूट कर उम्र भर, उसके बिना इस दिल की हालत को कौन समझे।

लोग कहाँ करते हैं, दिलों और दोस्ती का एहसास अलग है, पर हमने देखा है दोस्ती के बिना दिल अधूरा है और दिल के बिना दोस्ती सूनी है।

दिल एक छोटा सा शब्द, लेकिन अपने भीतर पूरी दुनिया समेटे हुए। दिल धड़कता है तो जिंदगी चलती है, दिल महसूस करता है तो रिश्ते बनते हैं, दिल टूटता है तो आंखें नम होती हैं, दिल खुश होता है तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जब दिल किसी के लिए धड़कने लगे तो दुनिया अचानक थोड़ी और खूबसूरत लगने लगती है।

ये आकाशवाणी गुवाहाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर 135 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 126 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम का पहला गाना है चोकोरी एल्बम से सपना अवस्थी के आवास में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। कार्यक्रम का अगला गीत है जमले हो जमले फिल्म से जगदीश खांडेकर की आवाज में।

इसी के साथ होता है कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत की समाप्ति। अभी दिन के 2 बजने को हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और 2:15 से दोपहर समाचार।

0: फाइनल घोषित किया और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
0: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
3: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
0: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
4: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
0: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
5: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
0: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस

0: मंत्री के वाई वी सुब्बारेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मॉनसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
1: ओपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ओपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
2: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पर एफआईआर करोगे? क्या न्याय है? राहुल गांधी क्या बोलते हो आप? क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
0: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम
0: करकेटा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
6: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा

0: अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए उनकी परिधि में।
1: आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ।
2: गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
3: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
2: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रिएजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी घाटी का प्राग्ज्योतिषपुर है। मीडियम वेव 289.9 मीटर, 1035 किलोहर्ट्ज़ और डीआरएम फ्रीक्वेंसी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रसारण का अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीली की तरफ। कार्यक्रम का पहला गीत है दिल धड़कने दो फिल्म से याशिता और साथियों के आवाजों में।

सैनिक भाइयों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत रंगीले। कार्यक्रम का अगला गाना है गुलाम फिल्म से कुमार सानू की आवाज में।

आइए सैनिक भाइयों, सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। कार्यक्रम का अंतिम गीत है जब वी मेट फिल्म से उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में।

इसी के साथ होता है आज के प्रसारण के अंतिम कार्यक्रम गीत रंगीले की समाप्ति। कल फिर इसी समय होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं त्रिनेनी को दीजिए इजाजत। जय हिंद।

0: आपसे थोड़ी ही देर में सुनेंगे FM रेनबो।
1: आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
2: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
3: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा। हमारा आज का विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी, यानी मोटापे से बचाव के क्या हैं उपाय और कैसे करें खुद को मोटापे से दूर ताकि हम रह सके स्वस्थ और तंदुरुस्त। जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से अपने आज के इस खास विषय में जो है डीलिंग विद ओबेसिटी, और इस विषय पर हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर अमित छाबरा, जो हैं एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ, और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो हैं गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अमित एंड डॉक्टर निमी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
4: थैंक यू पूजा।
5: थैंक यू पूजा। और ऑल इंडिया रेडियो जैसे सशक्त माध्यम पे इतना महत्वपूर्ण विषय हाईलाइट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
3: जी धन्यवाद मैम। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल है कि सरल शब्दों में अगर हम समझें ओबेसिटी यानी मोटापा क्या है।
4: बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है
3: जी।
4: और आप ये समझ सकते हैं कि इस समय ओबेसिटी इतनी प्रेवलेंट है
3: जी,
4: हालांकि पहले भी थी, बट इसका कंसेप्ट इस समय इतनी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि अब ओबेसिटी से रिलेटेड हमें इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस पता लगती हैं
3: जी।
4: तो हर इंसान चाहता है कि ये पता लगे कि वो सच में मोटा है कि नहीं। तो मोटापे की डेफिनेशन सही होना जरूरी है। बेसिकली हम मोटापे को BMI के फॉर्म में फाइंड आउट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मली हाइट और वेट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, बट इन जनरल अगर आपका BMI 23-25 है, आप कह सकते हैं रिलेटिवली ओके, बट बियॉन्ड 25 आप ओवरवेट या ओबेसिटी में आ जाते हैं। बट इन एनी केस इट शुड नॉट बी मोर देन 26.5 और 27। उसके बाद हमें इसको ओबेसिटी ग्रेडिंग क्लासिफिकेशन में हम इसको इंक्लूड करते हैं।
3: जी जी। डॉक्टर निमी, आप कैसे इसे डिस्क्राइब करेंगी?
5: पूजा, जहाँ तक स्टैटिस्टिक्स की बात है तो मैं आपको बता दूं कि अगर 5-6 साल पहले 24% लोगों में ओबेसिटी यानी मोटापा पाया जाता था, तो अब धीरे धीरे वो बढ़ के 30% से ऊपर हो रहा है। और शहरी इलाकों में तो आप सोचिए बिल्कुल एपिडेमिक ही आ गई है मोटापे की। अब जो है 42-43% लोग अपने तय सीमा से वजन से ज्यादा है, तो आप सोच सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग पब्लिक हेल्थ सिचुएशन है ये।
3: बिल्कुल, बिल्कुल।
5: और इसीलिए मैंने आपसे कहा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि जब जानेंगे तभी तो उसका निदान कर पाएंगे।
3: जी जी। श्रोताओं, सुना आपने, डॉक्टर निमी ने कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है जो है डीलिंग विद ओबेसिटी। डॉक्टर अमित, कौन कौन से कारणों से कोई व्यक्ति ओबेसिटी का शिकार होता है?
4: बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है
3: जी।
4: देखिए, ओबेसिटी का मतलब ये जरूर हमने बताया कि वेट गेन होना, एक वेट गेन की हमने लिमिट भी सेट कर दी
3: जी।
4: बट ये देखा जा रहा है कि इस समय जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, दे आर द मोस्ट कॉमन। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जीवन शैली
3: जी।
4: हम लोगों के पास ना तो रात में सोने का टाइम है, ना प्रॉपर रेस्ट का टाइम है, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फूड टू ईट एंड सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दिस इज द मोस्ट कॉमन रीजन। और इस वजह से हमारे कुछ स्पेशल हार्मोन्स हैं जैसे लेप्टिन रेलिन, इनका भी डिसरेगुलेशन हो जाता है। अदरवाइज और दूसरे हार्मोन्स हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन दिस डेज। अदरवाइज फीमेल्स में PCOD की प्रॉब्लम, थायराइड डिसऑर्डर्स, कुशिंग डिसऑर्डर जो कि हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जो कि नॉर्मली हम फाइंड आउट कि जब भी डायबिटीज ओबेस पेशेंट आता है, ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस आल्सो। जेनेटिक इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
3: इस पर भी विस्तार से जानकारी लेंगे सर आपसे जी। एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, पहले इनका कॉल ले लेते हैं सर।
4: जी हाँ जी।
3: हेलो
6: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार,
6: मैं जयकिशन अग्रवाल साइकिल मार्केट चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ
3: जी।
6: मेरे 3 क्वेश्चन है
3: जी।
6: पहला क्वेश्चन तो ये है, अगर कोई बच्चा या बड़ा आदमी मोटा हो जाता है, मोटा खाने से नहीं होता है, लोग ये कहते हैं कि तुम केला खाओगे ये खाओगे तो मोटा हो जाओगे। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज से के खाने से आदमी मोटा नहीं होता है, तो उसका वेट कैसे कम किया जा सके? एक तो ये

0: पॉइंट नंबर दो, जो आज लड़कियां या लड़के 20-22 साल के हो जाते हैं, शादी के काबिल हो जाते हैं, वो अपना वेट लॉस करने के लिए डाइटिंग पे चले जाते हैं। तो डाइटिंग करना, क्या उससे वेट लॉस होता है? क्या शरीर के अंदर झुर्रियां पड़ जाती हैं? क्या उससे विटामिन लॉस होते हैं या नहीं होते हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये है, जो आदमी 100 किलो से ऊपर होते हैं या 80-90 किलो से ऊपर हो जाते हैं और वो ऑपरेशन कराते हैं, और ऑपरेशन कराना क्या रिस्की है या रिस्की नहीं है, या ऑपरेशन कराना ठीक होता है? ये तीन क्वेश्चन
1: जी डॉक्टर साहब।
2: जय किशन जी, आपके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं बहुत ही शॉर्टली जवाब देने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन तो आपने बिल्कुल जो पूछा कि ये जो बच्चे जो आजकल कुछ भी खा लेते हैं, तो मेरा ये कहना है कि जो हेल्दी फूड है वो हम सब बच्चों को बोलना चाहिए कि वो खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे अगेन एक्सरसाइजेस की कमी, स्पोर्ट्स का टाइम कम हो गया है, तो इस वजह से इनको कुछ भी खाने पे जल्दी वेट गेन करने लगते हैं। तो इनको जो भी गुड फ्रूट्स दें, फाइबर रिलेटेड डाइट दें, और फ्लूड इनटेक भी बहुत कम हो गया है, एंड दे टेक लॉट ऑफ फैट, फैटी फूड्स आल्सो। तो हमें बच्चों को ये करना चाहिए कि इन चीज़ों को, फैटी फूड्स को या स्पाइसी फूड्स को अवॉइड करें, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फाइबर्स, ये वाली चीज़ें ज़्यादा बोलें। रिगार्डिंग दो आपने अदर क्वेश्चन पूछा कि जब भी हम वेट लॉस करते हैं तो नॉर्मली हम सभी लोग बोलते हैं कि विटामिंस रिलेटेड चीज़ें जैसे अच्छे से खाएं, जैसे मैंने भी बताया फ्रूट्स रिलेटेड। तो अगर आप वेट लॉस काफी ज्यादा करते हैं और बिल्कुल न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते तो ये सब चीजें हो सकती हैं। फेस पे रिलेटेड जो झुर्रियों की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा वेट है आपका 150-200 किलो और उसमें आप 40-50 किलो कम कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। बट आज के डेट में हम मेडिकल साइंस रिलेटेड बहुत ही मॉनिटर्ड ग्रेजुअल वेट लॉस कराते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी सेफ एंड हेल्दी, तो उसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है।
3: जी डॉक्टर अमित ने जो कहा उसमें तीन या चार कहिए शाश्वत सच मैं जोड़ देती हूँ अपनी तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेट बढ़ाना बहुत आसान है, वेट घटाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। तो अगर आपके हाथ में है तो बढ़ने ही ना दीजिए। दूसरा ये कि क्रैश डाइट्स नेवर वर्क, कभी भी क्रैश डाइट काम नहीं करती है। थोड़े समय के लिए कर सकती है बट ज्यादा उसका अच्छा असर नहीं है। और तीसरा ये है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति की समस्या नहीं है कि बच्चे बैठे रहते हैं, इसके बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं जिसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। और चौथा कि नींद अगर आप नहीं ले रहे हैं ढंग से तो आप वेट नहीं घटा सकते।
1: जी इस पर मैम हम आपसे विस्तार से जानकारी लेंगे। मैम अगर हम स्पेशली महिलाओं की बात करें तो उनमें मोटापे का क्या कारण होता है?
3: देखिए जनरल कारण तो डॉक्टर साहब ने बताया आपको। अब जहां तक महिलाओं की बात है तो मेरा कार्य क्षेत्र ही महिलाओं के बीच में है, 15-70 साल के बीच में। तो महिलाओं के साथ और बड़ी ट्रेजेडी है कि उनको कुदरत ने उनके शरीर को इस तरह से डिजाइन किया है कि उनको कुछ फिजियोलॉजिकल अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है फॉर द सस्टेनेंस ऑफ यू नो द रेसेस। तो उनको मासिक धर्म भी होता है, उनको प्रेगनेंसी होती है, फिर बच्चे को दूध पिलाना होता है, फिर मेनोपॉज होता है, गर्भ निरोधक भी उनको लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हार्मोन के साथ, यानी कि जो केमिकल लोचा जिसे कहते हैं, उसके साथ काफी खिलवाड़ करती हैं। कभी कोई हार्मोन ऊपर हो जाता है, कभी कोई नीचे हो जाता है, कभी उनको क्रेविंग्स होने लगती हैं तो वो बिंज ईटिंग करती हैं। प्रेगनेंसी में तो सब लोग उन्हें ठूस ठूस के खिलाते हैं, बच्चा हो जाता है तो उन्हें भूख ज्यादा लगती है, मेनोपॉज हो जाता है तो उनकी भूख मर जाती है। तो भाई महिलाओं का तो हाल बेहाल है
1: जी।
3: लेकिन सब कुछ मैनेजेबल है अगर आपको अवेयरनेस हो।
1: तो सुना आपने डॉक्टर निमी ने कहा कि सब कुछ मैनेजेबल है अगर आप अवेयर हैं। तो हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसमें हम बात कर रहे हैं ओबेसिटी की, इस खास विषय पर बातचीत जारी रहेगी। पहले सुनते हैं ये गीत।

0: यू रिड्यूस्ड है, वो मेंटेन है एंड यू वांट टू गेन वेट, दैट्स अ डिफरेंट इशू. इन दैट सिनेरियो वी नीड टू वर्क आउट, आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड अदर चीज़ें हमें मैनेज करनी पड़ती हैं. बट अगर आप रिड्यूस कर रहे हैं वेट, जैसे डॉक्टर निमी ने बताया कि डेफिनेटली थायराइड द मोस्ट कॉमन रीजन, बट अदर रीजन्स भी हैं, जैसे कि आप न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, विटामिन डिफिशियंसीज हैं, इवन एड्रिनल इनसफिशियंसीज आर ऑल्सो देयर, एंड कुछ लिवर एंड किडनी रिलेटेड इशूज भी हो सकते हैं. तो पूरा वर्कअप डेफिनेटली आपको करवाना
1: मेरे
0: चाहिए.
1: मेरे ख्याल से बुलीमिया और एनोरेक्सिया भी कारण हो सकते हैं स्ट्रेस.
0: डेफिनेटली इफ दे आर रियली वेरी स्ट्रेस्ड आउट.
2: जी जी जी. डॉक्टर निमी, हम महिलाओं की बात कर रहे थे, तो महिलाएं अलग अलग उम्र में अलग अलग बदलावों से गुजरती हैं, जैसा आपने बताया अभी. ये कितना असर करता है वजन बढ़ाने में? और इसके साथ मेरा एक और क्वेश्चन ये है कि गर्भावस्था संबंधी समस्याएं होती हैं जो ओबेसिटी से, उन दोनों के बारे में बताइए.
1: जी देखिए, गर्भावस्था में नेचुरली एम्फेसिस किया जाता है कि आप दो लोगों के लिए खाइए, लेकिन वो दो लोग में से जो दूसरा इंसान जो भी आपके पेट में पल रहा है वो तो मुश्किल से एक दो ढाई किलो का है, तो उसके लिए आपको डबल द कैलोरी नहीं खानी. आपको क्वालिटी डाइट लेनी है ताकि बच्चे के अंग अच्छे से बने, उसमें कोई डेफिशिएंसी ना हो, आपको एनीमिया ना हो. लेकिन ये मैं नहीं कहूंगी कि आपकी जो है 2000 से 4000 कैलोरी कर लीजिए. तो हमारे ना रेफरेंसेज ही गलत हैं शुरू से. हम ये सोचते हैं प्रेगनेंसी के बाद वजन बढ़ गया, कोई बात नहीं, सबका बढ़ता है, ठीक है. लेकिन हमें अपनी रेफरेंसेज रीडिफाइन करनी होगी कि प्री प्रेगनेंसी लेवल पे अगर हम वापस ला सकते हैं, जैसे सेलिब्रिटीज लाती हैं, तो क्यों नहीं, क्योंकि उसके फायदे आप आगे वाली उम्र में जरूर महसूस करेंगे, ऐसा मेरा कहना है.
2: डॉक्टर निमी, अगर प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ऐसा क्या करना चाहिए कि वजन कंट्रोल में रहे और जो प्रेगनेंसी की वजह से वजन बढ़ा है वो भी कंट्रोल?
1: पूजा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आपको. प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चा होता है, आपको जब आप लैक्टेट करते हैं, आपको बच्चे को दूध पिलाना है. एक तो पहली बात, दूध जरूर पिलाना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए नहीं, वो माँ के लिए भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज उसकी यूट्रस वापस अपनी शेप में आ रही है. उसकी एक्स्ट्रा कैलोरीज, एक्स्ट्रा फैट डिसॉल्व होके मिल्क प्रोडक्शन में उसका कैलोरीज लग रही हैं. तो उस स्टेज पे अगर आप अपनी कैलोरी इनटेक को थोड़ा कम कर लें, अपने पोर्शन को कंट्रोल कर लें, तो हो ही नहीं सकता कि वापस आप अपने नॉर्मल वेट पे ना आए. हाँ, थोड़ी बहुत टोनिंग की जरूरत है, बिकॉज लैक्सिटी हो जाती है एब्डोमिनल मसल्स की. तो थोड़ा बहुत वर्जिश आप करेंगे तो वापस उसी शेप में आ सकती हैं, और लोग आते हैं
2: जी.
1: तो जैसे पहले बोलते थे 10 से 12 किलो आपको गेन करना है, नहीं, अगर आप नॉर्मल वेट के हैं तो प्रेगनेंसी में आप 8 किलो 6 किलो 7 किलो में भी आप अच्छे से हेल्दी बेबी प्रोड्यूस कर वापस अपने शेप में आ सकती हैं
2: जी. और डॉक्टर साहब, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अलग अलग जो स्टेजेस हैं महिलाओं के, उनकी एज के, उनमें अलग अलग तरह के बदलावों से वो गुजरती है, कितना असर करता है वजन बढ़ाने में?
1: देखिए, मेनोपॉज में हमने देखा, और आजकल हो क्या रहा है कि मेनोपॉज जल्दी हो रहा है, लाइक 45, 44, 43 मेनोपॉज हो जा रहा है.
2: तो इसका वही लाइफस्टाइल
1: है, हार्मोनल चेंजेस हैं, पीसीओडी है, बिकॉज ओवरीज जो है जल्दी अपना काम बंद कर रही हैं. सो इट्स वेरी अलार्मिंग, बट इस पे फिर कभी एक प्रोग्राम करेंगे. लेकिन मेनोपॉज में यूजुअली बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाती है, तो फैट डिपोजिशन ऑन द थाइज, ऑन द ब्रेस्ट, ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी आता है. और अगर आपकी जेनेटिक डिस्पोजिशन है, अगर आपकी फैट पॉकेट्स ही बनी हुई है उस एरिया में, तो फैट जाके वहीं पे बढ़ने लगता है. तो ये बहुत कॉमन वो है, बट देर आर वेज एंड मीन्स टू कंट्रोल इट.
2: जी जी. तो सुना श्रोताओं आपने कि कितनी इम्पोर्टेंट बातें आज हम जान रहे हैं हमारे खास विषय में, जो है डीलिंग विद ओबेसिटी. डॉक्टर साहब, आप दोनों से बहुत अच्छी जानकारियां मिल रही हैं हमें. अब एक गीत सुन लेते हैं और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और ओबेसिटी से जुड़े सवालों पर.

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का हमारा विषय है डीलिंग विद ओबेसिटी और इस पर हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं डॉक्टर अमित छाबरा एंड डॉक्टर निमी रस्तोगी। मैम, हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम ले लेते हैं। नरेंद्र सिंह चौहान हमें लिख रहे हैं कि वर्तमान में जो खान पान हो गया है जैसे फास्ट फूड, क्या ये मोटापे का मुख्य कारण है? और दूसरा, वर्कआउट ना करना, क्या ये भी ओबेसिटी का ही मुख्य कारण है?
2: अमित जी, ये तो बहुत जाहिर सी बात है कि जिस तरह का खाना हम कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है या फिर उसको आपको सिग्नल दे रहा है कि हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हम एज अ रूल ऑफ थंब अपने पेशेंट से कहते हैं कि 80% घर का बना खाना खाइए। अब आप मुझे बताइए अपने कलीग्स में देख के कि कौन लोग ऐसे हैं जो 80% खाना घर का बना खाते हैं
1: जी।
2: और हम लोग पिज्ज़ा, बर्गर और इस नूडल्स वगैरह को क्यों हम

0: दोष देते हैं, जबकि हमारी हिंदुस्तान में भी जलेबी, रसगुल्ले, कचौड़ियाँ, समोसे ऐसी चीज़ों की
1: काफी
0: फरमाइश
1: जंक
0: की
1: फूड।
0: जाती
1: जी
0: है, तो
1: बिल्कुल,
0: ये भी, ये हिंदुस्तानी जंक फूड भी अच्छा तो नहीं है। और एक ही जगह पर बैठे बैठे खाना और उसके बाद उसको स्पेंड ना करना, उसकी कैलोरीज को स्पेंड ना करना, ये तो कहीं ना कहीं आपको असर दिखाएगा ही, तो ये तो
1: जी
0: जाहिर सी बात है।
1: जी जी जी मैम, जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हमें लिखती हैं कि डॉक्टर, फैटनेस कुड बी ऑफ टू रीजन इन वुमेन। फर्स्ट इज ड्यू टू जंक फूड एंड सेकेंड ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस। बट ड्यू टू हार्मोनल इम्बेलेंस, हाउ द फैटनेस रिफ्लेक्ट्स इन द बॉडी एंड विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी?
0: देखिए, जंक फूड की जहाँ तक बात है, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले दो खाने हैं, तो अगर आप कार्ब्स खा
1: जी
0: भी रहे हैं तो आप उन खानों को खाइए जो आपके शरीर में कम घुलते हैं।
1: जी
0: और मैं तो देखिए, मैं ये एडवाइस देती हूँ कि आप अपने खाने में से कार्ब्स को कम ही कर दीजिए,
1: जी
0: और अगर खाना खाने के बाद आपको 15 मिनट के बाद चलना ज़रूर है। लेटेस्ट रिसर्चेस ये कहती हैं कि आप अगर खाना खाने के बाद बैठे रहते हैं या सो जाते हैं तो आपका कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टू फैट ज़्यादा होता है।
1: जी
0: तो आप 30 मिनट 40 मिनट की वॉक कर लें, खाना जल्दी खा लें, तो वो आपको चर्बी के तौर पर नहीं लगेगा।
1: जी
0: एक सिंपल सा हैक है, वो आप अपना सकती हैं। और प्रोटीन, प्लीज, मैदा से बनी जितनी भी चीजें हैं आप उनको जहर समझ के छोड़ दीजिए।
1: जी
0: चीनी से बनी जितनी भी चीजें हैं, आप ये मान लीजिए, लिख लीजिए बड़ा बड़ा अपने सामने, चीनी एक तरह का जहर है, मैं चीनी नहीं खाऊंगा। ये
1: जी
0: बहुत एक्सट्रीम लग रहा है, बट हाँ ऐसा है, चीनी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो अब जितने कोल्ड ड्रिंक, जितने जूसेस आप सोचते हैं बड़े अच्छे हैं, नहीं, उनको छोड़ दीजिए।
1: जी
0: प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। और प्रोटीन का बड़ी मजेदार वाक्य सुनाती हूँ पूजा। मैं एक पेशेंट से मैं कह रही थी कि देखिए प्रोटीन खाइए, तो बोली प्रोटीन पाउडर तो बड़े महंगे होते हैं। अरे भाई, मैं पाउडर की बात नहीं कर रही हूँ,
1: जी
0: आपके किचन में जो खाना बनता है उसमें जो प्रोटीन है उसको खाइए। दालें हैं जिस तरह से,
1: जी
0: दूध से बनी चीजें हैं, और जो मोटा अनाज है उसमें भी प्रोटीन होता है।
1: जी
0: क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, प्रोटीन के बारे में जानकारी कम क्यों है?
2: एक्चुअली प्रोटीन नॉर्मली ये लोग सोचते हैं कि हम लोग जो खाने में खाते हैं वो नॉर्मली प्रोटीन की डेफिशिएंसी इसलिए होती है कि हम जो हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन होता है, जैसे लेट्स सपोज 100 kg ऑफ द पर्सन रिक्वायर्ड,
1: जी
2: नो 100 to 125 और 150 g, बट हम लेते नॉर्मली प्रोटीन कम है, क्योंकि हमारी हैबिट है कि कुछ लोग तो एग नहीं खाते हैं या फिर कुछ दाल नहीं खाते हैं। तो ओवरऑल हमें एक प्रॉपर प्रोटीन बेस्ड डाइट का एक प्रोटोकॉल बनाना चाहिए एंड शुड इंक्लूड मोर ऑफ दैट।
1: जी
2: जब ये मिसिंग हो जाता है, जैसे पर्टिकुलरली जो जिम गोइंग पर्सन या जिनको बहुत हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन ऐड ऑन द एक्स्ट्रा प्रोटीन फ्रॉम आउटसाइड।
1: जी डॉक्टर साहब, आशा पाठक हमें नीदरलैंड से लिख रही हैं कि वो डायबिटिक और थायराइड पेशेंट है, उनका वजन जो है 48 या 49 kg ही रहता है, ना बढ़ता है ना घटता है, क्या ये ठीक है? आप इन्हें एडवाइस
2: या
1: करें।
2: ऑल दो
1: जी
2: इन्होंने अपनी हाइट नहीं बताई है,
1: जी
2: बट हम ये मान के चलते हैं कि 49-48 तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं
1: जी
2: है। और डायबिटीज को थायराइड पेशेंट में खास तौर से हम वेट को ऊपर नहीं ले जाते हैं, इनफैक्ट वी ट्राई टू मेंटेन द वेट और स्लाइटली रिड्यूस इट।
1: जी
2: तो ये इनके लिए अच्छा है, लेकिन जब कभी ये वेट गेन करेंगी,
1: जी
2: जो हो सकता है इनकी शुगर और थायराइड में डिस्टर्बेंस आए, तो दे शुड ट्राई टू मेंटेन ए हेल्दी वेट,
1: जी
2: तो दैट विल बी गुड फॉर हर।
1: डॉक्टर साहब, प्रवीण हजारिका हमें गुवाहाटी असम से लिख रहे हैं कि ये, इनका वेट 80 kg है, इनकी हाइट है 5 feet 10 inches, और ये रोज सुबह मॉर्निंग में 40 minutes वॉक करते हैं, प्राणायाम करते हैं और एक एक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, लेकिन वो अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो क्या करें?
2: हाँ, जैसे कि इन्होंने बताया अपना हाइट एंड वेट, अप्रॉक्सीमेटली मुझे लगता है अराउंड 72-75 वेट इनका होना चाहिए। तो इनको 3 to 4-5 kg का मैनेज करना है। देन
1: जी
2: डेफिनेटली फर्स्ट थिंग, जैसे हम सभी पेशेंट को बोलते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, एंड देन लेटर ऑन हम फिर कुछ मेडिकेशन की बात करते हैं कि वेट लॉस के लिए क्या किया जाए। बट
1: जी
2: फॉर हिम, बिकॉज अभी इनको 5-6 kg वेट रिड्यूस करना है, तो ही शुड जस्ट वर्कअप अबाउट द कैलोरीज जो ये ले रहे हैं।
1: जी
2: कभी कभार जंक कैलोरीज हम लेते हैं, जैसे हम नॉर्मली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो करते हैं, बट इन बिटवीन कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसको हम कभी कैलकुलेट या करते ही नहीं अपने रूटीन
1: जी
2: में।
1: जी
2: तो ये सब चीज़ें हटाएं, और नॉर्मली मुझे ऐसा लगता है 6 meals a day स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स इज रिक्वायर्ड. आप 8:30 ब्रेकफास्ट करने की कोशिश करिए, अराउंड 11 o'clock फ्रूट्स, 1:30 लंच, 4 o'clock माइल्ड फ्रूट भी ले सकते हैं, 6:00 and 8:30 डिनर. इफ यू टेक ऑल दिस तो इश्यूज नॉर्मली नहीं आते हैं.
1: जी, हमारे साथ एक कॉलर है कॉल लाइन पे. डॉक्टर साहब, अनिल हमें गुरुग्राम से लिख रहे हैं कि इनके पेट के ऊपर काफी फैट है, उसे ये कैसे कम करें, उसके बाद हम अपना कॉलर लेते हैं.

0: जी
1: देखिए, कोई भी फैट का लोकेशन हमारे वेट रिडक्शन के उस पर नहीं डिस्टर्ब करता है. जब भी हम फैट रिड्यूस करते हैं तो ओवरऑल ही फैट रिड्यूस होता है. बट कुछ चीज़ें जैसे पेट के ऊपर का फैट, जैसे हमने बताया विसरल फैट या ये जो भी प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कोर एक्सरसाइजेज या कुछ ऐसी चीज़ें करें जैसे कि रनिंग कर सकते हैं, इवन कई तरह के ऐसे कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं, देन इट विल रिड्यूस इट. बट केवल ये करके नहीं होगा, डाइट के साथ ओवरऑल एक्सरसाइजेज भी करने.
2: डॉक्टर ने
0: मैं ये कह रही थी पूजा कि माइंडफुल ईटिंग बहुत जरूरी है. कोई भी ऐसी चीज नहीं है पानी के अलावा जिसमें कैलोरी ना हो
2: जी.
0: अगर आप दो चम्मच नमकीन आपने खा ली और आपको ये कॉग्निसेंस ही नहीं है कि मेरे अंदर 80 कैलोरी चली गई, तो फिर कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हैं
2: जी.
0: कुछ भी खाए माइंडफुल होके खाए, चाहे आपको लोग ये कहे बड़े ऑब्सेसिव हो गए हो, बहुत ध्यान रख रहे हो, कुछ भी ताना दे, लेकिन शरीर तो आप ही का है ना,
2: बहुत
0: आप ही के अंदर जा रहा है, तो प्लीज बी माइंडफुल.
2: हाँ जरूरी है बहुत वो हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए. सर मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि तनाव और हार्मोन्स में जो चेंजेस आते हैं वो मोटापे का कारण होते हैं.
1: तो जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि अगर स्ट्रेस किसी को है तो हमारे हॉर्मोन्स का डायरेक्शंस एंड लेवल्स रेशियो सब चेंज हो जाते हैं. बिकॉज वो स्ट्रेस आपका इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, लाइफस्टाइल चेंज ओवर ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेस है. कुछ लोग स्ट्रेस को ये समझते हैं कि जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है वो स्ट्रेस है, बट कई बार डिसीज भी एक स्ट्रेस है. कई बार आपका जैसे मैंने बताया खाने पीने का टाइम नहीं है, बॉडी को वो भी स्ट्रेस लगता है
2: जी.
1: तो जब भी ऐसे इश्यूज होते हैं हमारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं. हार्मोन डिस्टर्ब का मतलब कि जो हम लोगों का वेट या जिसे कहते हैं कि फैट सेल्स को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके इंसुलिन को भी मैनेज कर रहे हैं, आपके ओवरऑल डे टू डे लाइफस्टाइल को मैनेज कर रहे हैं, तो या तो उनके लेवल्स बहुत हाई हो जाते हैं या रिड्यूस हो जाते हैं
2: जी.
1: तो जिस वजह से हमारा वेट गेन होता है बट हम उसको रिड्यूस नहीं कर पाते हैं. तो दिस इज द मेजर रीजन दैट वी शुड फोकस मोर ऑन द स्ट्रेस मैनेजमेंट एट द सेम टाइम इक्वली. मे बी आई शुड से कि अगर मेरे ओपीडी में पेशेंट्स आ रहे हैं ओबेसिटी को लेके, तो हम कोशिश करते हैं कि 25% टाइम हम थोड़ा स्ट्रेस रिडक्शन में भी उसके साथ
2: जी.
1: बात करें.
2: एक कॉलर जुड़ गए हैं कॉल लाइन पे. हेलो
3: नमस्कार.
2: नमस्कार.
3: मेरे दो सवाल हैं सर से और मैम से कि एक तो कि वेट लूज करने के लिए क्या जिम ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि अक्सर जैसे हम सुनते हैं कि जिम आप कर रहे हैं उसके बाद जिम करना छोड़ देते हैं तो वेट दोबारा से आप वेट गेन दोबारा से कर लेते हैं. और दूसरा सवाल ये है कि आजकल हम जैसे वीडियोस में या

0: जी
1: मेरे ख्याल से 3 से 3.5 किलो मैक्सिमम।
2: या आई विल से लाइक दैट कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इवन इफ अगर हम लोग ओबेसिटी मेडिकेशन या जब भी वेट मैनेजमेंट करते हैं तो ये फर्स्ट रूल है कि हमें वेट लॉस बहुत फास्ट नहीं करना
0: जी.
2: है. अगर हम वेट लॉस बहुत फास्ट करते हैं तो कई कॉम्प्लिकेशन लाइक कोलेसिस्टाइटिस और इवन बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं
0: जी.
2: तो इसको हमें बिल्कुल सेफ हेल्दी वेट लॉस और ओबेसिटी मैनेजमेंट में, जैसे मैडम ने बताया 3 to 4 kg हम नॉर्मली सोचते हैं, मैक्स आप 5 kg जाना चाहिए. जैसे इनका दूसरा क्वेश्चन है, क्या एक मंथ में इतना हो सकता है कि नहीं, ये भी डिपेंड करता है कि द पर्सन इज डूइंग कितना वो डाइटिंग कर रहे हैं. कई लोग नॉन मेडिकल डाइटिंग भी करते हैं, जितना उनको नहीं करना चाहिए उससे ज़्यादा करते हैं, या फिर ओवर एक्सेसिव जिमिंग करते हैं जिसमें कि वो अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं रखते हैं, अपने मसल्स पे ध्यान नहीं रखते हैं, तो इनिशियली शुरू में वो वेट लॉस कर सकते हैं बट लॉन्ग रन में वो मेंटेन नहीं कर पाते, इवन वो फैटीग ज़्यादा फील करते हैं.
0: डॉक्टर साहब, जैसे पूछा गया अभी जो कॉलर थे, उन्होंने पूछा कि जिम करते हैं और अगर छोड़ देते हैं तो वेट बढ़ जाता है, क्या ये सही है या एक मिथ है?
1: देखिए, जिम के बारे में मेरे बहुत एक्सट्रीम व्यूज हैं तो आपने ये गलत टॉपिक छेड़ दिया. मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, वेट लॉस करना और वेट मेंटेन करना दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, और ये जो जिम फिनोमिनन है ना, ये बिल्कुल मेरे हिसाब से सस्टेनेबल नहीं है. आप अपनी दिनचर्या में जितने कदम चलती हैं या आप अपनी दिनचर्या में कितनी स्ट्रेचिंग, कितना वेट बेयरिंग या अपनी ही बॉडी का वेट बेयर करके जो घर में करने वाली एक्सरसाइज है वो करती हैं, वही काफ़ी रहता है
0: जी.
1: अगर आप अपने पोर्शन को कंट्रोल करके अपनी कैलोरीज को मेंटेन करें. जिम जाना फेजिक होता है, ठीक है, चले

0: आपका स्लीप कम है, डेफिनेटली आपके स्ट्रेस फेज बढ़ता है. सेकेंड फेज होता है आपका ईटिंग टाइम कब शुरू होता है. अगर आप बहुत लेट खाते हैं, ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, तो ये अगेन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है. लाइक आई सेड अर्लियर, ट्राई टू टेक ब्रेकफास्ट अर्लीस्ट एज पॉसिबल. इफ यू सी अवर विलेजर्स ऑल्सो, दे यूज टू ईट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. दिस इज अ वेरी गुड रीजन कि वो रिलेटिवली हेल्दी और हैप्पी रहते हैं. डाइट को बहुत एक साथ एक्यूमुलेट ना करें, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूट करें, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाएं. इससे बॉडी को मैनेज करने में बहुत ईजी रहता है. एंड लेटेस्ट ट्रीटमेंट, जहाँ तक आपने इंपॉर्टेंट बात बताई है, आजकल हमारे पास जैसे कि पहले हम डाइट एंड एक्सरसाइज तो सभी लोगों को पता ही है, बट कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका वेट रिडक्शन बहुत जरूरी होता है, उसके लिए हमारे पास एंटी ओबेसिटी मेडिकेशंस हैं, जिसको हम GLP या GIP बेस्ड थेरेपीज बोलते हैं. और इसके लिए हम हरेक को नहीं दे सकते हैं, बट उसके लिए हम उसको एलिजिबिलिटी उसकी वर्कआउट करते हैं, वेदर दिस पेशेंट इज फिट फॉर दैट थेरेपी और नॉट. बट अगर आप उस थेरेपी को देते हैं तो वेट लॉस होता है. इट शुड बी वेरी गाइडेड एंड मेडिकेटेड प्रॉपरली, एंड वी कैन रिड्यूस इवन अ वेट लॉस ऑफ 20-25% ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months टू ईयर ऑल्सो. तो जिस पेशेंट को इतनी रिक्वायरमेंट है 10-20%, वैसे इन जनरल अगर आप 10-15% वेट लॉस करें तो इवन प्री डायबिटीज नॉर्मल हो सकता है, और जो डायबिटीज है उनकी मेडिसिन भी हाफ हो जाती है. तो एवरी वन शुड फोकस ऑन 10-15% वेट लॉस एंड विच कैन बी डन. ये इंजेक्शन, जिसके बारे में दो बस पॉइंट बताना चाहूंगा कि इस इंजेक्शन को वंस ए वीक लिया जाता है. ये इंजेक्शन बेस्ड होता है, ऑल्दो ओरल थेरेपी भी है, बट नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये अभी अप्रूव नहीं है. नॉन डायबिटिक पेशेंट इंजेक्शन ले सकते हैं वंस ए वीक, देयर वो ग्रेजुअली दिया जाता है. कॉमनेस्ट प्रॉब्लम नॉजिया वॉमिटिंग होती है, वी कैन मैनेज विद दैट पार्ट ऑल्सो, बट ग्रेजुअली विद प्रॉपर अपडोजिंग ऑफ दिस मेडिकेशन वेट लॉस को भी अचीव किया जा सकता है. और इसको विद द टाइम पेशेंट ऑल्सो मैनेज करते हैं. लेट सपोज 80 kg पर्सन मे नॉट बी एबल टू वॉक प्रॉपरली, लेकिन जब वो 5 kg, 3-5 kg रिड्यूस करता है तो उसका मोटिवेशन बढ़ जाता है, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो ही कैन मेंटेन द वेट लॉस फॉर लॉन्गर टाइम.
1: जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर है, कॉल लाइन पे ले लेते हैं इनका कॉल भी.
0: यस यस.
2: हेलो.
1: हेलो.
2: हाँ, मैं यशपाल बोल रहा हूँ दिल्ली से.
1: जी जी.
2: पहले सबको नमस्कार.
1: जी
0: जी.
1: अच्छा,
2: मेरा दो तीन सवाल है मैडम. एक तो ये प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एक्चुअली कितनी है, मतलब की 1 gram per kg बॉडी वेट लेना चाहिए आपको. आदमी मोटा है और उसकी लाइफस्टाइल भी मतलब ऐसी है, तो क्या उसकी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होगी पर मतलब 1 gram per kg बॉडी वेट. और दूसरा सवाल ये है कि मैडम, ये जो BMI हम लोग ओबेसिटी को मेजरमेंट के लिए लेते हैं
1: जी,
2: तो उसमें वो कहाँ तक रेलेवेंट है? जैसे अभी किसी का BMI ज्यादा है, लेकिन मतलब 25 से ज्यादा है, 30 है, लेकिन उसका मसल मास ज्यादा है और फैट मास कम है, तो क्या वो भी ओबीस माना जाएगा?
1: जी, जी.
2: और एक छोटा सा मैडम तीसरा क्वेश्चन ये है कि आजकल बोला जाता है कि डिनर आप अवॉइड कीजिए या शाम को सनसेट से पहले पहले खा लीजिए, तो ये क्या हर के लिए एप्लीकेबल होता है, मतलब वेट लूज करने के लिए? थैंक यू.
3: इसमें से एक सवाल का जवाब तो मैं दे देती हूँ सर, कि आप ये कह रहे हैं कि प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, तो अलग अलग अवस्थाओं में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है. अगर आपके यहाँ बढ़ता हुआ बच्चा है जिसका विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, और लड़की या लड़का है, तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर आपके यहाँ गर्भावस्था किसी महिला को है तो उसको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होगा. अगर कोई वियर एंड टीयर हुआ है, कोई किसी बड़ी बीमारी से गुजरा है, तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा. बाकी टाइम पे 1 gram per kg बॉडी वेट ठीक
0: मेजर आपने बताया. जो दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि BMI रिलेटेड पार्ट, के बिल्कुल सही है. आजकल BMI अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज जो BMI के नियर बाय 20-25-7 हम लोग वेस्ट हिप रेशियो भी लेते हैं. इन दैट सिनेरियो भी हमने ये देखा गया है कि जो पेशेंट उतना नहीं लगता है जिसका BMI, जैसे इनका मसल मास ज्यादा है, तो हम कुछ स्पेशल टेस्ट से, जैसे डेक्सा स्कैन से, इवन कुछ स्पेशल अलग टेस्ट भी आते हैं जिसे हम फैट मेजरमेंट चेक कर सकते हैं, एंड विद दैट वे वी कैन स्टार्ट अवर ट्रीटमेंट.
1: डॉक्टर निमी, बात अगर हम जेनेटिक्स के करें, यानी अनुवांशिक कारणों की, तो क्या ये जरूरी है कि अगर माता पिता मोटे हैं तो बच्चों में मोटापे की संभावना बढ़ जाती है? और कई बार देखा गया कि कुछ बच्चे अधिक वजन के साथ पैदा होते, तो क्या ऐसे बच्चे आगे चलकर ओबेस हो सकते हैं?
3: हाँ और ना, दोनों ही.
1: देखिए,
3: अनुवांशिक फैक्टर्स तो होते हैं, कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, कुछ फैट डिस्ट्रीब्यूशन की जेनेटिक्स होती है, वो आती है बच्चों में, तो उनकी फैट पॉकेट्स एक पर्टिकुलर जगह पर होती हैं या एक्सेस होती हैं, लेकिन

0: ज्यादातर फर्क जो है एनवायरनमेंट से होता है, बिकॉज उनके परिवारों में फिर उसी तरह के गरिष्ठ खाने खाए जाते रहे होंगे, कोई
1: जी
0: ना कोई फैक्टर जरूर कॉन्ट्रीब्यूटरी रहा होगा। तो अगर आपके फैमिली में आनुवंशिक ओबेसिटी है तो भी आप उसे जान के उसको कंट्रोल कर सकती हैं और डॉक्टर से संपर्क कर सकती हैं। पूजा, मैं यहाँ पे ना भूख और वजन का संबंध समझाना चाह रही थी कि जब लोगों को भूख लगती है, ये जरूरी नहीं है कि उनका शरीर उनसे एनर्जी, कैलोरी या विटामिन मांग रहा है। ये इसेंशियली मेंटल फिनोमिनन है, वो घरेलिन, लेप्टिन, इस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं। तो भूख लगना एक इमोशनल और मेंटल फिनोमिनन है। तो अगर आप उस लेवल पर काम करें कि भाई मैं खाने के साइड से आपको भूख लग रही है, देखने से, स्मेल
1: जी
0: से
1: जी
0: आपको भूख लग रही है, तो भूख को जैसे धीरे धीरे आप चबा रहे हैं, या भूख को सेशियटी जो होती है, जो संतुष्टि होती है, वो आप अपनी तरह से, जैसे एक कटोरी दाल ले ली, आराम से बैठ के खाई, आपको लगा जैसे आपने पूरा खाना खा लिया,
1: जी
0: तो उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। वो तो
1: जरूरत है।
0: इंसान अपने लिए ही कर सकता है, डॉक्टर नहीं बता सकता
1: जी जी
0: उसको।
1: एक कॉलर है हमारे साथ कॉल लाइन पे, ले लेते हैं कॉल इनका भी। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी। धर्मवीर
1: नमस्कार
2: गांधीनगर दिल्ली से बोल रहे हैं।
1: जी।
2: डॉक्टर नमस्कार। डॉक्टर, एक हमारे परिचित हैं, उसका ऑपरेशन हुआ था, तो हफ्ता 10 दिन उनको लिक्विड दिया गया, वो नाक के थ्रू। तो उनका वेट काफी कम हो गया था, उनकी पैंटें लूज हो गई थी। तो ये क्या एक ट्रीटमेंट के कारण ऐसा हुआ कि जैसे उन्होंने लिक्विड ही लिया 10-12 दिन, तो इसी कारण से हुआ? दूसरा सवाल ये है कि अगर ये किसी को डायबिटीज है, डायबिटीज होने वाले को क्या हार्मोन्स में चेंजिंग होते हैं कुछ, ये जैसे कि कुछ उनको शारीरिक चेंजिंग आते हैं? इसके लिए
1: जी
2: मोटा
1: जी
2: मोटा आदमी या पतला आदमी दोनों को ही ऐसे होते हैं, इसमें
1: मैं आपके
2: हार्मोन्स के
1: पास,
2: बारे में भी
1: हाँ
2: बता
1: बात,
2: सकते हैं?
1: देखिए
2: डॉक्टर साहब, आपने हार्मोन्स चेंज के बारे में तो बता ही दिया
1: बताई
2: है,
1: दिया है।
2: बिल्कुल
1: लिक्विड वाली बात को लेके ये है कि वो नॉर्मली आपके जिस कंडीशन
2: जी
1: की वजह से ऑपरेशन हुआ है उस समय कुछ समय लिक्विड देते हैं, तो कैलोरीज को बहुत हाई नहीं रखते हैं, तो दिस इज नॉर्मल ऑल्सो कि फॉर
2: जी
1: सम टाइम आफ्टर सर्जरी पेशेंट में लूज वेट, बट वो ग्रेजुअली वो अपने आप पिकअप कर लेता है कैचअप वेट।
2: जी डॉक्टर साहब, ओबेसिटी कैसे मानसिक स्वास्थ्य को, हमारे मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है, और क्या है उपाय इससे
0: देखिए,
2: बचने के?
0: स्ट्रेस इटसेल्फ इज समथिंग दैट डिस्टर्ब्स द हार्मनी ऑफ द हॉर्मोन्स। इसके अलावा ऑफकोर्स वो कम मोटिवेटेड होते हैं, जो लोग स्ट्रेस में होते हैं वो एक्सरसाइज करने में, मूविंग मूवमेंट करने में कम मोटिवेटेड होते हैं। प्लस एंटी डिप्रेसेंट्स की वजह से हमने देखा है वेट गेन होता है।
1: जी
0: तो ये मल्टीफैक्टोरियल ही है, नींद नहीं आती है लोगों को तो वजन बढ़ जाता है,
2: हाँ
0: तो सारी चीजें कॉन्ट्रीब्यूटरी इस हिसाब से हैं। तो ओबेसिटी जो है मल्टी स्पेशलिटी डिसऑर्डर है, यहाँ पे साइकाट्रिस्ट का भी रोल आता है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का आता है, बिरियाट्रिक सर्जन का आता है,
2: जी जी जी
0: सभी इसमें इन्वॉल्व है।
2: डॉक्टर साहब, नींद की कमी या नींद से जुड़ी परेशानियां भी मोटापे का कारण होती है, क्या है बचाव के उपाय?
1: बचाव का उपाय नींद ही है।
2: जी, मगर कई बार नींद नहीं
1: हाँ,
2: आती।
1: कोशिश ये करनी
2: जी
1: चाहिए कि अगर आप 7 डेज में एटलीस्ट 5 डेज आउट ऑफ 7 डेज आपकी स्लीप प्रॉपर हो,
2: जी
1: और उसको आप स्लीप मेकअप करना जरूर चाहिए, बिकॉज
2: जी
1: ये इस पार्ट ऑफ स्ट्रेस। लाइक
2: जी
1: आई सेड, कुछ लोग स्ट्रेस दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, तो स्लीप एक्चुअली गिव्स यू इनविजिबल स्ट्रेस इन योर बॉडी।
2: जी डॉक्टर निमी, हमने महिलाओं की तो बात की, लेकिन अब पुरुषों की बात कर रहे थे कि हार्मोन्स का बदलाव पुरुषों को कैसे ओबेसिटी का शिकार बनाता है।
0: पुरुषों में अलग तरह के हॉर्मोन्स होते
2: जी
0: हैं, कुछ तो जनरल हैं जैसे थायराइड है, स्ट्रेस हॉर्मोन्स हैं,
2: जी
0: वो तो सबके
2: जी
0: जनरल ही हैं।
2: जी जी जी
0: लेकिन पुरुषों में यकीन मानिए फिजियोलॉजिकल ओबेसिटी कम देखने को मिलती है, उनका फैट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है। लेकिन हाँ, अगर उनकी दिनचर्या बिल्कुल ही अनहेल्दी है तो फिर वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाएंगी कहाँ, वो जाके फिर कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। और मैंने देखा है अल्कोहल इनटेक ऑल्सो इंक्रीजेस ओबेसिटी को बढ़ाती है।
2: जी
0: तो सेम रिस्क फैक्टर्स हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को ध्यान में रखने चाहिए।
2: जी
0: ओबेसिटी से आप सिर्फ ऑब्सेसिव लेवल पर लड़ सकते हो, सिर्फ लाइटली आप सोचो हाँ ठीक है वजन है कट जाएगा, नहीं क्या करना है, वो नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि आपको इतना हम डरा दें कि आप अगले दिन से अपने वजन पर चेक चेक
2: जी
0: रखना शुरू कर दें। लेकिन
2: जी
0: डरने की कोई जरूरत नहीं है, वी आर देयर टू गाइड यू।
2: अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं तो बहुत इजीली हम
0: जी
3: कर सकते हैं कंट्रोल वेट। डॉक्टर साहब
1: एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप वेट लॉस के लिए प्लान करें तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मत प्लान करिए
3: जी,
1: आप ये सोच के चलिए लॉन्ग रन, सिक्स मंथ्स टू वन ईयर मेरी स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी
3: जी।
1: वो स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप 1 kg टू 1.5 kg पर मंथ रिड्यूस कर पा रहे हैं तो यू कैन मेक योर सेल्फ लाइक ए

0: dinner for the first month, give yourself a reward and then move for the next month. तो ऐसे अगर आप just imagine करिए, अगर आप 1 kg भी reduce करते हैं तो in a year you will reduce 12 kg, which is really very remarkable. और अब हम 2 सालों बीत जाते हैं और एक एक दो दो किलो भी नहीं कम होता है.
1: जी डॉक्टर साहब, एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगी, ये जो चीट डाइट होती है ना वो कितनी खतरनाक होती है? कई बार मैं भी करती हूँ.
0: चीट डाइट के बिना तो कोई भी इंसान रह नहीं सकता है. बट यस, वंस यू डू दिस एंड मेक श्योर दैट नेक्स्ट डे यू डू अ गुड एनफ एक्सरसाइजेस टू न्यूट्रलाइज योर कैलोरीज.
2: दो तीन चीजें हैं, अगर आपके यहाँ यंग बच्चे हैं तो प्लीज प्लीज उनको स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज कीजिए. शुरुआत से ही माँ बाप अपने बच्चे को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ प्रेरित करते हैं. दूसरी बात, अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज कीप अ वेइंग बैलेंस. हर रोज आप अपना वजन लीजिए, हर दूसरे दिन लीजिए, लेकिन जहां आधा किलो एक किलो बढ़ा, आप प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू टेक करेक्टिव मेजर्स. और तीसरी बात, प्लीज 1 घंटा या 45 मिनट से ज्यादा बैठे मत रहिए. सिटिंग इज अगेन अनदर पॉइजन दैट वी हैव इन आवर लाइफ.
1: जी डॉक्टर साहब, क्या ओबेसिटी से कैंसर होने का भी चांस रहता है?
0: यस यस, ओबेसिटी में कई सारे कैंसर्स होने के चांसेस हैं. और इवन वी हैव सीन दैट वेरियस कैंसर्स, इवन चाहे वो ब्रेस्ट हो, कोलोन हो, प्रोस्टेट हो, ये कैंसर्स भी देखे गए. बट डेफिनेटली जिन लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, उनके वेट गेन होने के बाद ऐसा होता है, दैट टू वेरी हाई ओबेसिटी, नॉट इन जनरल ओबेसिटी.
1: जी जी डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में अब समय बहुत कम रह गया है, तो चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो कौन से तरीके हैं और आदतें हैं जो ओबेसिटी को दूर रखती हैं. स्वास्थ्य से जुड़े डूज एंड डोंट्स क्या है?
2: आई वुड ऑन अ लाइट वेन से कि विटामिन एम एंड विटामिन डी, विटामिन एम एंड विटामिन पी आपने नहीं सुना होगा, ए बी सी डी सुना होगा. एम इज मूवमेंट एंड पी इज प्रोटीन.
1: जी
2: राइट, इन चीजों पे ध्यान दीजिए और ऑब्सेसिव लेवल पे दीजिए, शुरुआत से दीजिए, लोगों को प्रेरित करिए. और अगर वजन बढ़ भी गया है तो एक बार अगर आप घटा लेते हैं उसको मेंटेन करिए.
1: जी डॉक्टर,
0: मैं बस लास्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ कि दो चीजें आप, तीन चार चीजें खुद भी कर सकते हैं.
1: हाँ जी.
0: एक तो स्टेप्स लेवल पे भी आप मैनेज कर सकते हो. अगर आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 steps कवर अप करने की कोशिश करिए थ्रू आउट द डे. वो आप इवन ऑफिस में भी अगर बैठे हैं तो इवन यू कैन वॉक हियर एंड आउट, उसमें बैठे बैठे ना रहे. टाइमली आप फूड जरूर खा लीजिए. अगर टाइमली नहीं खाएंगे तो डाइजेस्टिव हार्मोन्स अदर हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं. और एक स्लीप पैटर्न, और कोशिश करिए अगर डेली 1 आवर आप वॉक कर पाते हैं टू सम आवर, नॉट स्पेशली इन द मॉर्निंग, एनी टाइम इन द इवनिंग ऑल्सो, देन आई थिंक यू कैन मैनेज योर्स.
1: यूथ की बात करें तो आजकल कई यंगस्टर्स में भी ओबेसिटी हो जाती है, इसका क्या कारण है और निदान क्या है?
2: तो मेरे ख्याल से स्क्रीन टाइम इटसेल्फ इज समथिंग कि भाई बैठे ही तो हैं, तभी तो बैठ के स्क्रीन कर रहे हैं. तो अगर आप बैठे रहेंगे तो आप, यू आर मेकिंग योर सेल्फ अन ईजी टारगेट फॉर ओबेसिटी टू स्ट्राइक. तो प्लीज हर 15 मिनट में उठ के वॉशरूम जाइए, वापस आइए, अपने ही रूम में, अपने ही क्यूबिकल में घूमिए, छत पे जाइए, अपने आंगन में चलिए. अगर आप नहीं कहीं जा रहे हैं, प्लीज कीप ट्रैक ऑफ योर steps.
0: I also feel that these youngsters, which I feel in OPD also, they usually in a habit of awakening late night. So usually they wake up in the 2 a.m., 3 a.m. and they have the intermittent munching also in the meantime. So late night awakening ko aapko rokna padega. क्योंकि ये रोकेंगे तभी अर्ली मॉर्निंग वाले सारे इश्यूज शुरू हो पाएंगे.
2: और पूजा, ये बात सच है कि रात का खाया हुआ खाना ठीक से नहीं पचता है, वो डायरेक्टली फैट में कन्वर्ट हो जाता है अगर आप रात को खाते हैं और फिर
1: नाइट
2: सो जाते हैं.
0: मेंटली आल्सो इट डिस्टर्ब्स योर होल सिनेरियोस.
1: तो डॉक्टर अमित चावड़ा जो है एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट और डॉक्टर निमी रस्तोगी जो है गायनेकोलॉजिस्ट, दोनों ने आज हमें डीलिंग विद ओबेसिटी से जुड़े कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. आप दोनों हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद. और श्रोताओं, आज के लिए अपनी दोस्त पूजा को दीजिए इजाजत. नमस्कार.
2: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू एवरीवन.
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे. कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल.

0: शाम के 4 बज गए हैं। पेश है एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मानसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ है। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद ने पारित कर दिया है। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार के संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए हैं। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। एफएम रेनबो पर ये थे मुख्य समाचार। आगे है हमारा प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: 102.6 ये देश का नंबर वन रेडियो, आपका अपना रेनबो, और यहाँ पर प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा फेवरेट शो, वीकली शो संदेश टू सोल्जर्स। और संदेश टू सोल्जर्स के आज के इस खास एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद, और आज के हमारे खास मेहमान हैं मेजर मानिक एम जोली, सेना मेडल से सम्मानित रिटायर्ड ऑफिसर हैं, इंडियन आर्मी के वेटरन हैं, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनका एक्सपीरियंस है, फील्ड कमांडर, कॉर्बेट इनोवेटर एंड मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट, फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के मेजर मानिक एम जोली। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी रेनबो पर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शायद, बहुत अच्छा लगा आपसे आज फाइनली बात करके।
0: जी सर, हमें भी बहुत बहुत हम आपके शुक्रगुजार हैं, और सर आपने अपना समय निकाला, कीमती समय आपने निकाला है और आप आए हैं हमारे स्टूडियो में। सर बहुत बहुत आपका एक बार फिर से स्वागत हम करना चाहेंगे, और जैसा कि हमने आपको आपके बारे में सर थोड़ा सा बताया है तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो बातचीत अभी इंटरव्यू से पहले आपसे चल रही थी तो उसमें मुझे बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ पता लगी, और लग रहा है कि ये शो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सर हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से ये शुरुआत होती है एक आर्मी ऑफिसर बनने की तरफ, जो एक एक यंग कैडेट जाता है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस होता है और क्या महसूस करता है, वो क्या जोश, वो जज्बा, वो नेशन और एक देश के लिए एक जज्बा होता है जब जाते हैं?
1: तो शायद सबके अपने अपने रीजंस होते हैं आर्मी ज्वाइन करने के, लेकिन एक कॉन्स्टेंट फिक्स रीजन सबका ये होता है कि हर फौजी का अपने देश के प्रति सर्विस करने का, माँ भारती के लिए सेवा करने का एक पक्का जज्बा फिक्स रहता है। बाकी सब एक्सक्यूज हैं, पर आप कभी भी ये नहीं पाएंगे कि एक फौजी इससे हट के जवाब दे कि हाँ

0: मैं देश की सेवा नहीं करना चाहता था, कोई और कारण था
1: जी।
0: तो ये हमारा कॉन्स्टेंट है। तो मैं भी बचपन में, मेरे नाना जी भी आर्मी में थे,
1: अच्छा,
0: तो मेरी माँ ने बचपन से ही मुझे यही कहा था तुमने फौज में ही जाना है,
1: यानी कि ऑलरेडी आपको जो है ग्राउंड बना हुआ मिल गया था, बस
0: तो,
1: आपने उस पर
0: या तो
1: अपना सफर शुरू किया।
0: यस, जैसे मैंने 6th, 7th, 8th क्लास के दौरान
1: जी
0: तैयारी शुरू करी एनडीए की, तो 12th खत्म होने से पहले मैंने एनडीए क्लियर कर लिया था। तो
1: ओके
0: स्कूल के एकदम बाद फिर मैं एनडीए चला गया। मैं रोहतक का रहने वाला हूँ,
1: जी,
0: तो वहाँ से मेरी क्लास से हम 5 गए थे, तो वो शहर में भी थोड़ा, इट हैज़ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड, रोहतक सिटी का रिकॉर्ड है मैक्सिमम ऑफिसर्स प्रोड्यूस करने का हरियाणा में। तो बस हमारे यहाँ काफ़ी ट्रेंड होता है आर्मी में जाने का, आर्मी नेवी एयरफोर्स मतलब।
1: जी सर, आपने मेजर मानिकम जौली हमारे साथ जो सेना मेडल से सम्मानित हैं सर, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से आपको सेना मेडल से सम्मानित किया गया और दूसरे अवार्ड भी आपको प्रदान किए गए हैं। साथ ही आपको पीएम मोदी का मिशन इनोवेशन नेशनल चैंपियन का भी अवार्ड दिया गया। उसके अलावा ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी जिसमें आपके पूरे करियर में लगातार कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ आप हासिल करते रहे अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से। उसके अलावा हम और भी और चीज़ें हैं जो हमें आपके बारे में पता लगी हैं, क्योंकि आप कमीशन हुए थे कोर खरेजमेंट में 1999 में, फिर उसके बाद आपने मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम किया और आपने 10 साल से, करीब 10 साल आपने वहां पर अपनी सर्विसेज प्रदान की और काउंटर इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के तौर पर।
0: हाँ जी,
1: तो ये बहुत ही एक ना वैरायटी वाला और बहुत ही अलग अलग तरह के आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एक आर्मी ऑफिसर, फिर उसके बाद आपने जम्मू कश्मीर में काफ़ी लंबा समय दिया है, सर्व किया है आपने, और जिस टाइम पर आप कमीशन हुए उस टाइम पर कारगिल वॉर का मेरे ख्याल से टाइम था।
0: बिल्कुल, हम जब कमीशन हुए 99 जून में, कारगिल वॉर चल रहा था।
1: अच्छा,
0: तो जब हमारी कमीशनिंग परेड थी हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि अब लड़ाई में जाने
1: हम भी जाएंगे। अच्छा,
0: मुझे याद है कि स्टार न्यूज ने एक रिपोर्टर जर्नलिस्ट को भेजा था हमें इंटरव्यू करने के लिए।
1: ओके,
0: और जो जो लड़के इन्फेंट्री में गए थे, जो वहां पे लड़ाई के लिए जा रहे थे, यूनिट्स थी, तो उनका उन्होंने हमारा अलग से इंटरव्यू लिया था।
1: अच्छा,
0: कि आप लोग लड़ाई में जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? तो हम सारों का एक ही जवाब था, बहुत एक्साइटेड है, जल्दी भेजिए। लेकिन, लेकिन जब तक हम कमीशन हुए एक्चुअली सीज फायर अनाउंस हो गया।
1: अच्छा,
0: तो ये हम अपना, ठीक है, देश के लिए युद्ध ना होना एक तरह का अच्छी, लेकिन पर्सनली आपस में ये है कि हम अपना दुर्भाग्य मानते हैं कि मैं उस लड़ाई में लड़ने का मौका नहीं मिला।
1: मतलब एक फौजी है और वो चाहता है कि मैं किसी तरह से लड़ाई का हिस्सा बनूं।
0: इससे बड़ा टेस्ट क्या है हमारे लिए कि लड़ाई में लड़ने का मौका मिले।
1: बिल्कुल,
0: तो वो यूं लगा लीजिए 2-3 हफ्ते से हम मिस कर गए थे।
1: अच्छा, और सर ये भी है कि उस कारगिल वॉर में जो लोग, जो फौजी शामिल थे उस वॉर का हिस्सा थे, जिसमें से काफ़ी सारे जो फौजी थे उनको शहादत भी हुई, तो वो आपके इमीडिएट सीनियर भी थे, मतलब आपसे उनकी अच्छी खासी, जब आप ट्रेनिंग में थे तब उनसे मिलते थे, बातचीत होती थी।
0: बिल्कुल, बहुतों को हम बहुत अच्छे से जानते थे। हमारा वो हमारे से 1 या 2 और सीनियर्स थे, काफ़ियों को हम एनडीए में मिले थे, कुछ को आईएमए में जानते थे। जो फेमस कैप्टन विजयन थापर थे,
1: जी जी,
0: वो मेरे साथ वाले कमरे में रहते थे, और मुझे याद है मैंने उनसे, जब वो पास आउट होके जा रहे थे, वो 6 महीने पहले पास आउट हुए थे।
1: अच्छा,
0: तो मैंने उनसे, उन्होंने मेरी कैसेट ले रखी थी माइकल जैक्सन की।
1: अच्छा,
0: तो मैंने कहा सर कैसेट तो वापस कर जाओ। कहते अरे यार जब नेक्स्ट मिलेंगे तब दे देंगे।
1: ओके,
0: मतलब आज भी वो बात याद है। उसके बाद फिर तो हमने यही पता लगा कि उन्होंने देश के लिए इतना बड़ा काम किया।
1: जी,
0: सुमित रॉय, विक्रम बत्रा, सारे हमारे सीनियर्स थे।
1: अच्छा,
0: और मतलब देश इनके बारे जितनी बात करे उतनी कम है। इतनी यंग एज पर, आप किसी भी वॉर में देखिए, इंडियन आर्मी के यंग ऑफिसर्स की जो रेशो ऑफ सेक्रीफाइस है वो किसी भी देश से ऊपर मानी जाती है। क्योंकि जब हम लोग पहुंचते हैं
1: जी,
0: तो सारे टैक्टिक्स एक तरफ, हम कहते हैं हम ही चार्ज करेंगे, आप हम अपने जवानों को सभी यही बोलते हैं मेरा पीछा मेरा। तो इसीलिए ये एक प्रिंसिपली हमारी आर्मी बहुत, ना केवल एथिकली, बहुत
1: एथिकली और साथ ही साथ
0: वेरी वेल स्ट्रक्चर्ड एंड प्लेस्ड, लेकिन उसका ये भी कारण है कि जितने यंग ऑफिसर्स जाते हैं
1: उनमें से
0: कोई ऐसा नहीं होता तुम आगे चलो हम तुम्हारे
1: हम कहते हम आगे,
0: हम आगे चलेंगे तुम हमारे पीछे चलो।
1: क्या बात है, ये जज्बा तो सर काबिल तारीफ है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियां और यादगार किस्से हैं जो हम मेजर मानिक के साथ डिस्कस करेंगे आज के संदेश टू सोल्जर्स में। और साथ ही एक चीज और आपको मैं बता दूंगा कि जिसमें हम आगे बात करेंगे कि मेजर मानिक ऑथर भी हैं और इन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारे साथ है मेजर मानिक एम जौली, इंडियन आर्मी से सेना मेडल से सम्मानित। आज के रहेगी बात जारी संदेश टू सोल्जर्स।

0: है मेरे साथ, मेरा नाम है शाहिद और मेरे साथ हैं आज के संदेश टू सोल्जर्स के खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, गोरखा राइफल्स और मिलिट्री इंटेलिजेंस फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट मिलिट्री इंटेलिजेंस, कॉर्पोरेट इनोवेटर, मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट, नेत्रम डिफेंस रिव्यू के फाउंडर हैं और साथ ही सेलिब्रेटेड ऑथर हैं, टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में कश्मीर में इन्होंने ट्रूप्स को भी कमांड किया है। हम एक बार फिर स्वागत करेंगे मेजर मानिक जॉली का। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर संदेश टू सोल्जर्स में।
1: थैंक यू सर। थैंक यू
0: सर। मैं आपके बारे में जब बात करना शुरू करता हूं तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, लेकिन उसके बारे में हम साथ साथ बात करते रहेंगे। पहले सर मैं आपके वो जो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं उनके बारे में जानना चाहूंगा। आपको पहला सेवा मेडल से सम्मानित किया गया जो गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है आर्मी का, तो वो किस तरह से और किस उपलक्ष्य में आपको दिया गया?
1: ये मेरी नौकरी का पहला दूसरा साल ही था। मैं यंग कैप्टन था और कुपवाड़ा में हम लोग तैनात थे। मेरी गोरखा रेजिमेंट यूनिट का हिस्सा था मैं
0: जी।
1: तो मेरी जो यूनिट है फर्स्ट बटालियन फोर्थ गोरखा राइफल्स, तकरीबन 200 साल पुरानी हो जाएगी थोड़े दिन में।
0: ओके।
1: वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेजिमेंट्स। तो बहादुरी और ड्यूटी हमारे रग रग में तैयार किया जाता है। तो उसमें हमारी यूनिट ने इतना अच्छा परफॉर्म करा था, हमने 1.5 साल में तकरीबन 100 टेररिस्ट मारे थे।
0: ओके।
1: तो यूनिट को भी साइटेशन मिला था। तो हमने बहुत ऑपरेशंस करे, उनमें से एक ऑपरेशन में मुझे अवार्ड मिला था जिसमें टेररिस्ट ने हम पर हमला किया था जंगल अच्छा। में, और उन्होंने हमारे भी एक सैनिक शहीद हो गया था। फिर उन टेररिस्ट को मार के अपने शहीद सैनिक की बॉडी वापस लाने के लिए मुझे अच्छा। सेना मेडल दिया गया था।
0: तो ये पूरा एक मिशन रहा होगा जिस तरीके से आपने बताया कि ये पूरा एक ऑपरेशन रहा होगा। हाँ तो सर वो तो बड़ा टफ और बड़ा ही खतरनाक रहा होगा, कुछ बताइए उसके बारे में।
1: देखिए जो ये ऑपरेशन है आज इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, मैं और यही बात आपके लिसनर्स को बताना चाहता हूँ
0: जी,
1: कि हम सब अपने घर में बैठे हैं, FM सुन रहे हैं, बारिश का मौसम है, चाय पकौड़े खा रहे हैं
0: जी,
1: पर यही टफ और डेंजरस मिशन इस टाइम लाखों सैनिक कश्मीर के जंगलों में और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में कर रहे हैं,
0: अभी भी कर रहे हैं अपनी
1: दिस वेरी मोमेंट एज वी आर स्पीकिंग, डेली करते हैं 365 दिन। तो एक सोल्जर की लाइफ किस सेकंड आपको जंगल में कहाँ टेररिस्ट मिल जाए कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। कभी कभी आप महीनों सालों भटकते रहते हैं, आपका एनकाउंटर नहीं होता, कभी आपके एक महीने में 4 एनकाउंटर हो जाते हैं। तो इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी जीरो बट पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। सो व्हाट हैपेंस, आप जाते हैं, आपको एनकाउंटर हो गया, इसमें बड़ा चांस है आपने पहले उनको देख लिया, उन्होंने आपको पहले अच्छा। देख लिया, वो फायर करके भागना चाहेगा, वो रुक के लड़ना चाहेगा, बहुत इतने ज्यादा फैक्टर्स आते हैं, वो ऊपर है आप नीचे हैं, आप नीचे, तो इतने फैक्टर्स डिसाइड करते हैं उस इन दैट वेरी मोमेंट कि व्हाट विल बी द आउटकम, कि इस लड़ाई से कौन कैसे निकलेगा।
0: तो सर जब मिशन पर निकलते हैं सोल्जर्स हमारे निकलते होंगे तो वो ये पता होता होगा कि या तो मतलब जीत कर वापस आएंगे मार करके या फिर
1: शहीद हो
0: गए।
1: ये फौज का प्रिंसिपल है हमारे यहाँ, देर इज नो रनर्स अप, यू नो, ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है इंडियन आर्मी में। हमें एक ही चीज सिखाई जाती है, विक्ट्री और सैक्रिफाइस। सो आप अगर आपको कहा गया है, और कारगिल वॉर अगेन फिर से जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो यंग ऑफिसर्स इतने सैक्रिफाइस हुए, क्योंकि ट्रेनिंग डे पहले दिन, हम 16 साल के होते हैं जब NDA ज्वाइन करते हैं,
0: अच्छा,
1: उस दिन से लेकर जब तक 4 साल ट्रेनिंग है, कमीशन होते हैं, एक ही चीज सिखाई जाती है कि अपने देश के लिए, अपनी फौज के लिए, अपनी यूनिट के लिए, आपके ट्रेंच में जो साथी है उस बड़ी के लिए लड़ाई लड़नी है,
0: उस बड़ी के लिए।
1: तो आप उसके लिए लड़ते हो, वो आपके लड़ता है, ऐसी टीम बनती है।
0: क्या बात है सर, मतलब वो आपके लिए जान कुर्बान के लिए तैयार है और आप उसके लिए, एक दूसरे के लिए।
1: यही कॉन्फिडेंस है जो आर्मी लीडर्स को कॉर्पोरेट लीडर्स इतना फर्क बनाता है, क्योंकि एक एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है
0: जी।
1: उस जवान को पता है मेरा जो ऑफिसर है कभी ऐसा ऑर्डर नहीं देगा कि मेरी जान खतरे में आए।
0: क्या बात है सर,
1: अगर खतरा होगा तो खुद पहले जाएगा। और एक ऑफिसर को मालूम है कि जब तक मैं हूं ये मेरे जवान मेरे से आगे लड़ने को तैयार है। तो जब ये इस तरह की
0: ये जो जज्बा है,
1: हाँ जी, जज्बा रहता है, तो सब एक से बढ़कर
0: एक दूसरे के लिए, अपने साथी के लिए, बड़ी के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं।
1: बिल्कुल। और कॉन्फिडेंस रहता है कि
0: कॉन्फिडेंस रहता है,
1: अपने सुपीरियर के ऑर्डर में पूरा फेथ है कि ये कभी ऐसा नहीं करेगा कि मेरी जान खतरे में। हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम दुश्मन को मारने के लिए लड़ रहे हैं। वो कहते हैं गिविंग लाइफ फॉर योर कंट्री इज एन ऑनर, तो लेट दैट ऑनर बी ऑफ एनिमी।
0: क्या बात है
1: वो
0: क्या बात
1: हाँ, तो हमारा काम है जीतना, दुश्मन को मारना।

0: तो एक बहुत ही अलग लेवल की ट्रेनिंग और कैपेबिलिटी डेवलप करी जाती है आर्मी में,
1: जी
0: इसी कारण वो ऐसे ऑपरेट करती है। अगर आप उस ढर्रे को कहीं और अप्लाई करना चाहेंगे जहाँ पे लाइफ एंड डेथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर वो ऑपरेट वो नहीं एक सक्सेसफुल
1: नहीं
0: होता।
1: हो सकता सर, वही चीज़ है कि जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग कितनी टफ होती है एक आर्मी ऑफिसर की, लेकिन उस टफ ट्रेनिंग के बावजूद भी वो जो जज्बा है शायद वो उससे भी ज्यादा भारी है उस पर, उस ट्रेनिंग पर वो जज्बा कि वो जो अपने नेशन, अपने वतन के लिए, देश के लिए, अपने बड़ी के लिए, अपनी यूनिट के लिए।
0: देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। वही भी हम एनडीए जाए 16-17 साल, इट्स जिसको बोलते हैं इम्प्रेशनेबल एज। 16-17 साल में आप दुनिया को समझना शुरू करते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: अब जो लोग कॉलेज जाते हैं उनके चारों तरफ, फॉर एग्जाम्पल आज का देखते हैं इंस्टाग्राम पे वायरल रील बनाना,
1: बिल्कुल सर, सोशल
0: स्टूडियो
1: मीडिया
0: मूवी
1: पूरा
0: हीरो।
1: पूरा एकदम
0: हमारे आसपास क्या होता था, हम जहाँ ट्रेनिंग करते थे वहां लिखा था एक गोली एक दुश्मन, जो हमारे कमरों किल डेथ बिफोर इट किल्स यू, आई विल डाई फॉर माई कंट्री। चारों तरफ आप
1: वो स्त्री
0: ऐसे,
1: मोटिवेटेड
0: हाँ
1: मतलब स्लोगन्स आपको मिल
0: या
1: रहे हैं।
0: आप ऐसे एनवायरनमेंट में होते हो कि दिन रात आप एक ही चीज सोचते हो कि मैं इस देश के लिए बना हूं, और अगर कभी जरूरत पड़ेगी
1: तो मैं अपनी जान कुर्बान करूंगा
0: बिल्कुल विदाउट अ डाउट,
1: विदाउट अ डाउट,
0: ये
1: क्या
0: तो
1: बात है
0: इसमें कोई हेजिटेट नहीं करेगा कभी।
1: सर। बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो मैं आपसे आगे भी करूंगा। अभी एनडीए के बारे में आपसे पूछूंगा कि
0: हाँ जी,
1: आपने उस ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या, जाहिर है वो वक्त बड़ा ही मेरे ख्याल यादगार होता है बडीज के साथ, और इंटरेस्टिंग भी, और कुछ शरारतें भी जरूर होती हैं उस जमाने में,
0: बिल्कुल बिल्कुल, वो एज ऐसी
1: तो
0: होती है और टाइम ऐसा
1: और
0: होता
1: टाइम
0: है।
1: ऐसा होता है।
0: हाँ
1: तो हम अपने लिसनर्स को यहाँ बताना चाहेंगे कि आप हमें मैसेज करें, मैसेज बहुत सारे आ चुके हैं सर, मैं आपको बता दूं, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप हमें मैसेज करके हमारे आज के गेस्ट मेजर मानिक एमजोली से सवाल कर सकते हैं। नंबर है 9868107070। सर मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ूँ तो कुछ मैसेजेस तो मैं अभी ले लूँ। ये असम से सर मैसेज आया है, गुड आफ्टरनून कह रहे हैं, ये हितेंद्र दास हैं सर, आपको भी और हमें भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए हितेंद्र। और उसके बाद मैसेज आया है स्वतंत्रता दिवस का, सब सोल्जर भाइयों का हमारा सल्यूट, हमारा भारत माँ की रक्षा सभी क्षेत्र में उनके बलिदान क्या श्रेष्ठ जीवन का संदेश है। कर्नाटका राज्य विजयपुर डिस्ट्रिक्ट आराकेरी गांव से, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, आरकेडी, पंडित चन्नप्पा सरवाड़ का सर ये मैसेज है।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, हाय आई एम अजय अहिरवार फ्रॉम मध्य प्रदेश, क्लास 12 सर ये स्टूडेंट है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, वॉट थिंग्स शुड आई रिमेंबर ड्यूरिंग प्रिपेरेशन एंड फॉर SSB इंटरव्यू, मेनली SSB गाइडेड फॉर सिविलियन। और अजय अहिरवार सर मध्य प्रदेश है सर, इनको कुछ आप गाइड करना चाहेंगे।
0: तो शायद वैसे तो ट्रेनिंग के लिए मतलब बहुत लंबा होता है ऐसे, पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो
1: जी
0: अक्सर लोग गलती करते हैं, वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन करके इंटरव्यू की तैयारी करके कुछ और बन के दिखाना चाहते
1: अच्छा
0: हैं, और वो पक्का रेसिपी टू फेलियर है।
1: अच्छा
0: आप इंटरव्यू में जैसे हैं 100% वैसे रहिए, और वो तो फिर इंटरव्यू पर है वो आपको शेयर, दैट इज
1: ठीक
0: उसको कोई
1: ठीक
0: गारंटी नहीं कर सकता, पर अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करेंगे तो
1: जी
0: डेफिनेटली थ्रू नहीं होंगे। तो आप अपनी पर्सनैलिटी को कायम रखें
1: जी
0: इंटरव्यू की
1: जो आप
0: तैयारी
1: हैं,
0: जो आप हैं।
1: क्या बात
0: अगर
1: है,
0: आपको पिक्चर पसंद है आप बोलिए मुझे पिक्चर देखना पसंद है, ये मत
1: अच्छा
0: बोलिए
1: अच्छा
0: मुझे
1: अच्छा
0: बुक्स पढ़ना पसंद है, क्योंकि टेबल के उधर जो बैठे उसने बहुत
1: जी
0: बुक्स पढ़ी है पकड़ लेगा आपको
1: तो आपको जो आप हैं वही दिखाएं
0: बिल्कुल
1: वहां पर।
0: बिल्कुल
1: सर एक और मैसेज है, जय हिंद सर जी, जय हिंद मेजर साहब, रजनीकांत रघुनाथ पाटिल महाराष्ट्र वार्ड 1 से मैसेज कर रहे हैं सर ये। और सर ये हैं
0: आपको
1: संदेश
0: भी जय हिंद।
1: जी, शो बहुत खूबसूरत शुरू है जी, दिल को छू लेने वाली बहुत खूबसूरत जानकारियां मिल रही हैं। शाहिद जी नमस्ते, मानिक सर नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। यश शिंदे हैं सर ये मुंबई से, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए, जय हिंद। और सर ये एक और मैसेज आ गया है, जय हिंद मेजर साहब, कारगिल वॉर तो हमने नहीं देखा है, मूवी में देखा है, लेकिन आपके जरिए हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। एडवांस 80th हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस, वंदे मातरम। रोहित मेहर हैं सर ये बुदापाली विजयपुर बारगढ़ ओडिशा से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, सबको जय हिंद।
1: और सर सभी लोग इस वक्त जो है देशभक्ति के जो ना उसमें सराबोर हैं, जुनून में, जोश में, क्योंकि 15 अगस्त बस अब परसों नजदीक ही है, और ये स्वतंत्रता दिवस जो हमें याद दिलाता है कि जो कुर्बानियां दी गई इस देश की आजादी के लिए, उन सबको हम याद करते हैं। तो यहां पर हम आगे बढ़ेंगे सर, हम बात करेंगे अब एनडीए की। आपने एनडीए में जब आप आए तो क्या माहौल था वहां पर, नया नया एक्सपीरियंस कैसा लगा एक 16 साल के जब मानिक वहां पर आ रहे थे तो?
0: हाँ जी बिल्कुल, बहुत देखिए, एक तो आप घर से पहली बार बाहर गए होते हैं, और घर से पहली बार बाहर जाके आप किसी रिजॉर्ट में रह रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन आप
1: अच्छा
0: बिल्कुल एक वन ऑफ द टफेस्ट मिलिट्री एकेडमी में चले गए
1: जी
0: जहाँ पे डिसिप्लिन इज द हाईएस्ट।

0: आपका आपसे 6 महीने सीनियर, वो आपके लिए भगवान की तरह है। वो जो बोलेगा आपको करना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: फिजिकली, इट्स वेरी स्ट्रेनिंग। वैसे तो मैं स्पोर्ट्स में था, लेकिन
1: अच्छा
0: एनडीए का अलग लेवल होता है। तो शुरू में आपको यू नो रूटीन इज वेरी टाइट, फिजिकली इतना डिमांडिंग है,
1: जी
0: तो एक बार तो हर कोई हिल जाता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे कहा स्पोर्ट्स में तो आप थे, लेकिन वो स्पोर्ट्स अलग है जो हम स्कूल में करते हैं या आपने,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो आप एकेडमी में कर रहे हैं।
0: बट हमारे स्कूल में बाई चांस स्पोर्ट्स की अच्छी लेगेसी थी, तो मेरे को फिजिकली तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई परफॉर्म करने
1: जी
0: में। बट ये है कि शुरू में जाके, क्योंकि हम यू नो अपने घर पे रहे थे, कई बच्चे सैनिक स्कूल से आते हैं, उनको थोड़ी
1: जी
0: आदत होती है।
1: ओके
0: हम पहली बार घर से आए थे, मुझे याद है कि पहले 1-2 हफ्ते में घर की बहुत याद आती, क्योंकि
1: जी
0: चारों तरफ हर कोई आपको खाने को दौड़ता है एनडीए में, और घर पे तो जो भी है आपको
1: बिल्कुल
0: सारी
1: जाहिर है
0: सहूलियत
1: प्यार
0: है,
1: से,
0: प्यार है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं एक बार काफी दुखी बैठा था अपने रूम में, तो मेरे एक सीनियर आए, वो सीनियर मोस्ट थे, 6th टर्म में थे वो। तो क्या हुआ? मैं कहा सर घर की बहुत याद आ रही है। तो कहते चिट्ठी लिखो।
1: अच्छा
0: तो मैं आपको बस बता रहा हूँ बस सोच कैसे होती है। मैं कहा सर चिट्ठी तो लिख चुका। कहते इधर आओ। मुझे अपने रूम में लेके गए,
1: जी
0: अपना परफ्यूम निकाला अच्छा सा, मेरे पे स्प्रे करा, कहते बस अब खुश हो जाओ, यही खुशी है, तो वही तुम्हें ऑर्डर है खुश होने का। मैं ठीक है सर। तो और उसके आई थिंक बट वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वी हैड वाज, हमारे टाइम वहां पे मेजर साहब पिक्चर की शूटिंग हुई थी।
1: अच्छा मेजर साहब अमिताभ बच्चन
0: हाँ जी।
1: और अजय देवगन। जी
0: तो उस थोड़े महीनों के लिए एकेडमी का में इतने फनी इंसिडेंट्स हुए थे। आई
1: अच्छा, तो कई महीने वो शूट चला था।
0: थिंक एक दो तीन महीने तो चला था मेरे ख्याल से।
1: अच्छा
0: तो उसमें क्या हुआ कि 1-1.5 महीना तो चला था फॉर श्योर।
1: जी
0: अकेडमी ने मना कर दिया कि हम अपने कैडेट शूटिंग के लिए नहीं देंगे।
1: ओके
0: तो जो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स थे वो बॉम्बे से यंगस्टर्स को लेके आए, उनको तो 150 चाहिए थे, उन्होंने हमारे जैसी यूनिफॉर्म पहनाई
1: ठीक है
0: और उनसे परेड वरेड कराते थे और उनके शूटिंग वूटिंग के लिए यूज करते थे।
1: ठीक है
0: लेकिन अब अकेडमी में ऐसा हो गया, जब भी आपको कोई सीनियर पकड़े इधर आओ, जूनियर यूँ करते, हम तो मुंबई से आया है, शूटिंग वाला है। तो काफी क्योस मचा हुआ था उन दिनों।
1: अच्छा
0: थोड़ी देर में सब सॉर्ट आउट हो गया। और फिर एक दो सीन थे, जैसे क्रॉस कंट्री का सीन है जिसमें एक पहाड़ी के ऊपर वो दिखाते हैं अजय देवगन फर्स्ट आया,
1: अच्छा
0: तो उसमें उन्होंने हमारे कैडेट्स वगैरह को बुलाया था कि पीछे आप लोग भागना, लास्ट में ये आगे आके फर्स्ट आ जाएंगे।
1: ओके हीरो मतलब हीरो बन
0: हाँ,
1: जाएंगे ठीक है
0: हमारे कैडेट थोड़ा दिल पे लगे कि हमारे रहते कैसे फर्स्ट आ
1: अच्छा
0: जाएगा। वो आई थिंक 10-15 बार शूट करना पड़ा, हर बार हम आगे आ जाते थे कोई ना कोई। तो ऐसे इंसिडेंट्स बहुत, इट वॉज वेरी फनी। तो
1: अच्छा
0: हम लोग आई मीन काफी क्लोजली शूट, मैं भी एक दो किसी शूट में हूँ, भीड़ में कहीं पे दिख रहा हूँ इधर उधर।
1: अच्छा हम सर मैं मूवी देखूंगा आपको देखने के
0: हाँ जी
1: लिए
0: प्लीज। तो काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी, और
1: जी
0: उसका गाने भी, एक्चुअली इस मूवी के गाने भी बहुत अच्छे थे सभी।
1: हाँ गाने सर बड़े सुंदर गाने थे और सिंदूर सुंदर हीरोइन भी थी इसके अंदर सोनाली बेंद्रे।
0: बिल्कुल
1: तो सर
0: बिल्कुल।
1: वहां पर गाने भी शूट हुए होंगे उसी एकेडमी में।
0: गाने शूटिंग हमने कभी देखे नहीं। आई थिंक
1: अच्छा
0: हमारे कुछ सीन्स वगैरह मेस के, पीटी ग्राउंड, क्रॉस कंट्री,
1: ये हुए
0: मिलिट्री, ये सब होते थे। लेकिन और सोनाली बेंद्रे तो पूरी एकेडमी की फेवरेट थी।
1: अच्छा
0: मतलब आप आई डोंट नो लेट 90s में,
1: जी जी
0: एंड
1: जी
0: स्टिल टुडे शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस
1: यस
0: में।
1: ऑफ कोर्स
0: और वो एक्टिंग एज अ पर्सन शी सो नाइस, जिनसे मिली भी सब इतनी तारीफ करते थे कितने अच्छे से बात करती हैं। तो पूरी एकेडमी बस सारी
1: दीवानी
0: दीवानी थी, कहीं जहां वो होती देखने भाग जाते थे।
1: तो मैंने तो सर आपसे बात करते करते ना वो एक सॉन्ग भी निकाल लिया है, तो उसके बारे में बताइए सर कुछ, कोई किस्सा किसी शूट के दौरान आपके सामने आया हो, आपकी टीम के सामने आया हो।
0: हमें बस एक बार एक मिलिट्री हॉस्पिटल का वहां पे सीन है
1: अच्छा
0: मूवी में, तो जैसे ही होता था तो सारी एकेडमी में बात हो जाती, सोनाली बेंद्रे मिलिट्री हॉस्पिटल में आई है।
1: अच्छा
0: तो 1 घंटे में कई, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी हाथ दर्द हो रहा है, वहां
1: अच्छा
0: पे पहुंच गए बहुत सारे रिपोर्ट करने, सबको वापस भगा दिया था। ये सब चलता रहता था वहां पे।
1: जी, तो
0: हाँ
1: अजय देवगन की कभी कोई शूट आपके आसपास आपके सामने कभी हुआ, क्योंकि एकेडमी में ही शूट चल रहा था।
0: जी, वो ड्रिल ड्रिल में पीटी में कई बार आते थे। बट आई मीन मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लेवल ऑफ फिटनेस, जो लेवल एनडीए कैडेट्स का होता है
1: बिल्कुल
0: वो फिल्मी हीरोज का नहीं होता। तो अक्सर मतलब थोड़ा सबड्यू करके, थोड़ा खर्च के उनसे करवाया जाता था
1: अच्छा,
0: ताकि फिल्मी इफेक्ट पूरा दिख जाए।
1: बिल्कुल
0: हाँ
1: रीटेक्स के साथ
0: हाँ
1: वो
0: जी।
1: सब ठीक से हो
0: पर मैं
1: जाए।
0: आपको ये बता रहा हूँ, हमें बहुत अच्छा महसूस होता था। मतलब एक तरह का कॉन्फिडेंस होता था
1: कॉन्फिडेंस
0: कि बॉलीवुड वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हम हैं,
1: जो आप हैं
0: जो एक कॉन्फिडेंस आता
1: बिल्कुल
0: है कि ये मतलब वो एक्टर्स हैं, ऑब्वियसली वो फौजी नहीं है, वो अंडर
1: बिल्कुल
0: ट्रेनिंग नहीं है, पर हमें बहुत कॉन्फिडेंस आता था देख के कि हमने जो अचीव किया है, जो हमारी पर्सनालिटीज हैं, जो हमारा फिटनेस है,
1: फिटनेस है।
0: वो

0: लोग एज एन एक्टर बनने की कोशिश करते हैं टू मेक अ गुड मूवी, सो वो कॉन्फिडेंस आपके साथ सारी लाइफ रहता है.
1: बिल्कुल बिल्कुल. तो मेजर साहब, मैंने यहाँ पर ये उस फिल्म का जो आपके साथ यादों में जुड़ी हुई है,
0: बिल्कुल
1: मेजर साहब, उसका ये खूबसूरत ट्रैक निकाल लिया है और आपकी पसंद का भी है. मेजर मानिक एम जौली हमारे साथ हैं, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन. आप बने रहें हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में और मैसेज करते रहें.

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है संदेश टू सोल्जर्स। शाहिद आपके साथ और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जोली। इंडियन आर्मी वेटरन हैं, सेना मेडल से सम्मानित हैं और गोरखा राइफल और मिलिट्री इंटेलिजेंस में रहे हैं। फील्ड कमांडर, कॉर्पोरेट इनोवेटर और मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटजिस्ट हैं। फाउंडर हैं नेत्रम डिफेंस रिव्यू के और सेलिब्रेटेड ऑथर भी हैं। टीवी पैनलिस्ट हैं, लीडरशिप कोच हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बार बार अगर बताना भी चाहूँ तो भी कुछ ना कुछ रह जाएगा। तो मेजर साहब, हम बात कर रहे थे सर आपके एनडीए के दौर की, वो बड़े इंटरेस्टिंग किस्से आपने जो सुनाया और हमने गाना भी वो सुना, सोनाली बेंद्रे पर और अजय देवगन पर जो पिक्चराइज किया गया, आपने उनको देखा कि वो शूट के दौरान क्या क्या वहाँ पर इंसिडेंट्स हुआ करते थे। तो मैं आगे बढ़ूँ, मैं सोच रहा हूँ कि पहले क्यों ना मैसेजेस ले लेता हूँ क्योंकि हमारे लिसनर इंपॉर्टेंट हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे, हम उनके मैसेज पढ़ के सुनाएं। सर मनीष इदरीसी का मैसेज है रामपुर बिलासपुर से। नमस्कार सर जी, नमस्कार मेजर साहब।
1: नमस्कार, जय हिंद।
0: ये मैसेज है, जय हिंद टू सर, आई एम अजय अहिवार फ्रॉम मध्य प्रदेश। फिर से आया इनका मैसेज और क्लास 12 प्रिपेयर्ड कर रहे हैं ये। फिर से मैसेज आया और हमने आपको बताई दिया है, सर ने बताया कि किस तरीके से आप कर सकते हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब ये मैसेज आया सर, संदेश टू सोल्जर्स, मेजर साहब जय हिंद, शो रोचक, ज्ञानवर्धक, लाभप्रद और सकारात्मक संदेश देने वाला है। मेजर साहब इस शो से लोग इंस्पायर्ड होंगे, देशभक्ति का जज्बा कायम रहेगा, ये कह रहे हैं।
1: धन्यवाद, जय हिंद।
0: और ये कहते हैं कि मेरा मानना है कि हर दिल में देश प्रेम की आग सुलगती रहनी चाहिए। और ये एक आगे कुछ पंक्तियां लिखते हैं सर, अर्ज है, चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।
1: बहुत बढ़िया।

0: वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।
1: भारत माता की जय, जय हिंद। बहुत अच्छा मैसेज था
0: जी सर। मैसेज और भी हैं, मैं सोच रहा हूँ कि पढ़ के सुनाई दूँ, फिर आगे हम बातचीत करेंगे। बहुत सारे मैसेज हैं सर, ये बहुत लंबा एक मैसेज है। गुड आफ्टरनून टू यू बोथ सर, संदेश टू सोल्जर्स, इज अ नाइस प्रोग्राम। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सोल्जर्स एंड ऑल्सो योर पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक एक्सपीरियंस, स्पेशली रिगार्डिंग कारगिल वॉर, रिगार्डिंग योर अचीवमेंट एंड मेडल्स विच आर डिजर्विंग ऑन द 15th ऑफ आवर कंट्री इंडिया सेलिब्रेटिंग 80th इंडिपेंडेंस डे। ऑन दिस ओकेशन आई विश ऑल इंडियंस हैप्पी 80th इंडिपेंडेंस डे। भारत माता की जाए, अपना भारत महान है। वंदे मातरम, जय हिंद। फ्रॉम एम आर मधुसूदन, ये एम बी राजेश्वर, सन ऑफ एम बी राजेश्वर, दत्तर कॉलोनी नियर शिवालयम टेम्पल, सीता फल मंडी, सिकंदराबाद, तेलंगाना से सर ये मैसेज आया है।
1: थैंक यू।
0: काफी खूबसूरत और बड़ा लंबा मैसेज था ये। और ये है, जहिंद सर, आपको और हमारे देश को समस्त जवान स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप हैं तो हम सुरक्षित हैं, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शबनम, वी के दत्त कॉलोनी, नई दिल्ली से।
1: धन्यवाद आपको भी, जय हिंद। और मैं बोलना चाहूंगा
0: जी जी जी
1: कि ये सारे अच्छे मैसेजेस सुन के, चाहे मैं अभी रिटायर्ड हूं या सर्विंग हो
0: जी,
1: किसी भी फौजी को बहुत अच्छा लगता है, जिसको बोलते हैं ना कि आपको पता है भाई हमारे देश में इतना प्रेम और रिस्पेक्ट है फौजियों के लिए।
0: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
1: आप अपनी ड्यूटी करते हैं, घबराते नहीं, आपको पता है पीछे मेरा देश है,
0: पीछे मेरा देश है, देशवासी हैं सर। और देशवासी सर आपको सलाम करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और सर हम आपके ऋणी हैं, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो हमारे देश के भीतर भी, देश की सीमाओं पर भी, देशवासियों की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनका जो डेडिकेशन है देश और देशवासियों के लिए, तो वो सैल्यूट है सर हमारे सोल्जर्स को। इसीलिए हमारा ये प्रोग्राम है संदेश टू सोल्जर्स। सर मैसेजेस में लगातार अभी मैं सोचता हूँ रोक दूं, अभी बहुत सारे मैसेज आए। मैं आपसे सर आगे बातचीत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सर आपसे हम जानने के, फिर आप जब गोरखा रेजिमेंट में आप हुए कमीशन 1999 में, तो वो फिर जो सफर शुरू हुआ, अब आप बताएं कि फिर जिस तरह से आपका फिर आगे आप जाते हैं।
1: मैं तो फिर कमीशन कुपवाड़ा में था, कश्मीर में फॉरवर्ड एरिया है, वहां पे हमारा रोल या तो लाइन ऑफ कंट्रोल पे कारगिल के एकदम बाद था।
0: अच्छा।
1: तो सीज फायर तो नहीं था, तो दिन रात गोलाबारी होती रहती थी।
0: अच्छा।
1: तो हम भी उन पर करते हैं, वो भी हम पर करते रहते हैं। उस टाइम ये क्रॉस बॉर्डर रेड बहुत होती, उन्होंने काफी सोल्जर्स हमारे उसमें भी शहीद हुए, लेकिन जो था मतलब वो एक सोल्जर के लिए एज अ सोल्जर
0: जी
1: एक एक्सपीरियंस था कि आप किसके लिए सोल्जर बने। अगर आपने लड़ाई नहीं देखी, अगर आपने गोलाबारी नहीं देखी, अगर आपने वो, तो इस हिसाब से फिर हम काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में चले गए
0: जी,
1: जहाँ पे हमने, मेरी यूनिट ने बहुत अच्छा करा, क्योंकि वो बहुत एक्टिव एरिया था।
0: अच्छा, मतलब सेंसिटिव एरिया था और हमेशा कुछ ना कुछ हैपनिंग।
1: तो कुपवाड़ा बॉर्डर जो है वहां से बहुत सारे लॉन्च पैड है जहां से पाकिस्तान टेररिस्ट अंदर भेजता रहता है।
0: ओके।
1: तो इस कारण वो बहुत एक्टिव एरिया माना जाता है
0: वहां पे। और वहां पर आपकी पोस्टिंग थी।
1: हाँ जी। तो आम आदमी एक्चुअली अक्सर जब भी आप बात करते हो, जंगल में टेररिस्ट ढूंढ रहे थे, पहाड़ में ढूंढ रहे थे
0: जी,
1: उसका स्केल समझ नहीं पाता। स्केल पे हम बात कर रहे हैं कि वो जंगल कितना बड़ा था।
0: अगर मैं इमेजिन भी करूं तब भी मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता।
1: यूं लगा लीजिए एक पूरा शहर जंगल है।
0: अच्छा।
1: जिस शहर में आप लोग, आपके लिसनर रह रहे हैं
0: जी,
1: वो पूरा शहर जंगल है और आप 100 लोग हैं।
0: अच्छा।
1: आप कितना ढूंढेंगे, और उसमें पहाड़ियां भी हैं, क्लिफ भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है 20-20 फुट।
0: 20-20 फुट?
1: 20 फुट तो एवरेज आफ्टर स्नोफॉल होती है।
0: अच्छा।
1: और आप 9000 फीट से आपका बेस शुरू होता है, 15-17,000 फीट तक जा रहा है, आपको सारा पेट्रोल करना है। तो अक्सर आपने देखा होगा फौजी से आप सब लोग पूछते हैं कैसा था ये था। हाँ ठीक था, अच्छा था।
0: तो यानी कि वो ओनली रीजन कह रहे हैं, वो
1: ओनली रीजन इज समझा पाना पॉसिबल नहीं है कि वो किस तरह का एक्सट्रीम एनवायरनमेंट है।
0: सर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहूंगा, वो आप बताइए प्लीज।
1: तो सी जो माउंटेन्स हैं वहां पे क्लिफ्स हैं
0: जी,
1: और बर्फ पड़ी हुई है, एक पीछे की तरफ पूरा जंगल है, चलने की जगह नहीं है, स्नो स्टॉर्म आ जाता है, ब्लिजर्ड आ जाएगा।
0: अच्छा।
1: उसके बाद ऊपर से टेररिस्ट है,
0: जाहिर है,
1: जो वेट
0: सबसे बड़ा,
1: जो हाँ जो वेट कर रहा है कि आप उसको पहले दिख जाए
0: जी।
1: खाना आपको हफ्ते में एक बार हेलीकॉप्टर से आता है,
0: एक बार।
1: हाँ, जो भी फ्रेश राशन वो आपको हफ्ते में एक बार मिल जाएगा, राइट। आपको अगर गर्म रहना है, ये 20-25 साल पुरानी बात है, तो उसमें केरोसिन का स्टोव यूज करना पड़ रहा
0: है।
1: मॉडर्न इक्विपमेंट उस टाइम नहीं थे
0: जी।
1: डेली आप, क्योंकि अनदर थिंग इज ये कारगिल के एकदम बाद की बात है।
0: हाँ।
1: तो इंडियन आर्मी ने, भारत सरकार ने डिसाइड करा कि कारगिल इसलिए हुआ था कि कुछ पहाड़ी हमने विंटर वैकेट करी थी तो पाकिस्तानी आकर बैठ गए।
0: ओके।
1: तो अब हम कुछ भी विंटर वैकेट नहीं
0: करेंगे।

0: जाएंगे, हम वहां पर भी अपनी ड्यूटी रखेंगे।
1: तो नेचुरली प्रेशर इज ऑन आर्मी। अब वो पहाड़ियां जहां पर हम आज तक गए भी नहीं थे,
0: ओके,
1: उनके ऊपर छोटे छोटे टुप्पे, हिल, रॉक, वहां पे जाके नई पोस्ट एस्टेब्लिश करना, रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आप अगर फौजी को ये भी बोल देंगे ना चप्पल में जाओ फौज, बर्फ में जाके पोस्ट बना लो, वो चला जाएगा।
0: अच्छा,
1: हमें आदत में नहीं होता है बोलना कि ये कंप्लेंट करे कि ये नहीं है, वो नहीं,
0: एक्सक्यूज कुछ नहीं।
1: या तो उस हिसाब से काफी डिफिकल्ट, काफी डिफिकल्टी में सर्विस थी। और उस सारे में आपको अंदर आते हुए टेररिस्ट को भी रोकना है, जो अंदर आ गए उनको भी ढूंढना है।
0: अच्छा,
1: आपको ये भी इंश्योर करना है कि जो वहां पे जो गांव है, लोग हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप, वो आपके देशवासी हैं,
0: बेशक
1: आप नहीं
0: उनकी भी
1: चाहते,
0: हिफाजत।
1: हाँ आपको ये नहीं चाहते वो सोचे फौज हमारे को परेशान कर रही है। तो इट इज अ वेरी हाई स्ट्रेस, वेरी स्ट्रेसफुल जॉब। और एक ही चीज आपको कॉन्फिडेंस देती है, मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये इस तरह के मैसेजेस कि आपको बस,
0: जहां से हमारी बात शुरू हुई
1: हाँ,
0: थी,
1: कि मैं आपको यही बस कि जो मैं कर रहा हूं इस देश में उसकी वैल्यू है, ये लोग उसको मानते हैं मैं क्या कर रहा हूं।
0: जी, उनको कदर है इस बात की और उनको परवाह है कि भाई हमारा जो फौजी, हमारा
1: मतलब
0: भाई है।
1: बात है, सारे सरकारी डिपार्टमेंट दुनिया के एक तरफ, सारे लीडर ब्यूरोक्रेसी और फौजी एक तरफ,
0: फौजी एक तरफ,
1: जो प्यार हम फौज को मिलता है वो नहीं। और इसी कारण से
0: जी
1: आप कॉन्फिडेंटली देश सेवा में लगे रहते हैं।
0: बिल्कुल सर, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये तो मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ। हम हर हफ्ते यहाँ पर संदेश टू सोल्जर्स में अपने जो हमारे आर्मी वेटरन्स हैं और जो सर्विस में भी हैं, फौजी आते हैं, तो उनसे मिलकर के वो जो देशभक्ति का जज्बा है ना सर, जो है ऑलरेडी, वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि वो बातें, वो उनके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइव एक्सपीरियंसेस, जो हम कभी ना महसूस कर सकते, हम कितना भी इमेजिन करने की कोशिश करें, जैसे कि आपने बताया अभी, वो हम कर ही नहीं सकते। और एक फौजी उसको एक्सप्लेन कर पाने में मतलब असमर्थ ही महसूस करेगा कि मैं कैसे बताऊँ। तो ये एक अननोन सी एक जो डेडिकेशन हम महसूस करते हैं कि वो हमारे फौजियों की है, तो वो सिर्फ एक दिल से जज्बा ही हम जाहिर कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। सर, इसी दौरान जैसे अब आप जब दूर होते हैं, घर से भी दूर होते हैं, और फिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी लोकेशंस पर, ऐसे हालात में होते हैं जहां पर जैसे आप, तो कितने टफ, तो फिर घर की भी याद आती होगी
1: बहुत, बिल्कुल। और ये दिस इज, वहां पे मोबाइल भी नहीं था
0: और उस जमाने में तो
1: महीनों महीनों में बात होती थी, मैं 10-15 दिन बाद चिट्ठी आती थी,
0: 10-15 दिन,
1: क्योंकि पहाड़ में वो एक खच्चर के ऊपर वो पोर्टल लेके
0: अच्छा।
1: आता था चिट्ठी, दूर से दिख जाता था 2 किलोमीटर दूर से आ रहा है, और सारे एक्साइटेडली बैठे रहे कि मेरी भी चिट्ठी,
0: मेरी भी चिट्ठी आएगी।
1: तो जो आप फिल्मों में छोटा सा दिखाते हैं ना चिट्ठी का क्रेज, वो मजाक नहीं है।
0: अच्छा,
1: आपको महीने में एक बार चिट्ठी आनी है आपकी, और आपको लगता है यार कहीं से, परिवार से, आपके
0: दोस्तों से
1: खबर आए, तो लेटर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी।
0: क्या बात है, मतलब लेटर्स की हम आज,
1: और 15 दिन से आप लिख रहे हो
0: जी,
1: आपको उसी डाक से वापस
0: वापस भी भेजना है, ओके।
1: तो लेटर्स की बहुत वैल्यू। तो उस टाइम एक रेडियो कैसेट ये सब होता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो आपके पास कुछ कैसेट बाय चांस जो आपके साथ ऊपर
0: चली गई,
1: वो नेचुरली या तो आपकी फेवरेट बन जाती थी,
0: क्योंकि और कुछ है ही नहीं,
1: या रेडियो सुनते थे कभी अपना कभी पाकिस्तान का,
0: अच्छा,
1: दोनों कैच करते, तो बस कुछ गाने आपके फेवरेट बन जाते हैं, आप वो सुनते रहते हैं।
0: तो उसमें से कुछ बताइए सर।
1: तो एक उस टाइम मेरा फेवरेट बहुत, अभी भी आज भी है, एक रुस्तम सर आपका पुराना गाना फिर तुम्हारी याद आई,
0: अच्छा,
1: सनम। और उस गाने की एक्सटेंडेड वैल्यू इसलिए है क्योंकि वो सोल्जर्स गाना गा रहे हैं,
0: ओके,
1: ये सेनापति जो है किले पे खड़ा है और नीचे,
0: अच्छा,
1: उसके जवान गाना गा रहे हैं, और अपने यू नो
0: परिवार को
1: याद करते हो, गर्लफ्रेंड को, बीवी को याद करते,
0: क्या गाना बात है।
1: तो द होल सेटिंग ऑफ द सॉन्ग इस तरह से है कि वो सिर्फ लव सॉन्ग नहीं है, इट इज लॉन्गिंग ऑफ सोल्जर्स, जो सोल्जर्स हैं
0: जी,
1: वो उसको याद कर रहे हैं, जिसको मिस कर रहे हैं।
0: क्या बात है। तो मैंने सर ये आपके कहते कहते ही सॉन्ग निकाल लिया है,
1: जबरदस्त।
0: मेजर मानिक एम जॉली आज के संदेश सोल के हमारे खास मेहमान, सेना मेडल सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन, और मेजर मानिक की पसंद का ये ट्रैक आप भी एंजॉय करें हमारे साथ, बने रहें संदेश सोल्जर्स में, शाहिद आपके साथ।

0: 102.6 देश के नंबर वन रेडियो आपके अपने रेनबो पर प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स में आप सुन रहे हैं शाहिद की आवाज और मेरे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान मेजर मानिक एम जॉली, सेना मेडल से सम्मानित इंडियन आर्मी वेटरन। और ये गाना मेजर साहब की पसंद से हमने सुना सुरतम सोहराब से। सर, यहाँ पर बातचीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था वो तो उतना शायद जोशीला नहीं था, लेकिन जिस जोश से हम आगे बढ़े हैं तो प्रोग्राम खत्म होने का समय आ गया और अभी मेरे पास बहुत सारी बातें आपसे करने के लिए बची हुई हैं, तो मैं मैसेजेस जो ऑलरेडी काफी सारे इकट्ठे हो गए मैं उनको बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगा मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी आपने एक काफी बड़ा समय दिया, एक बड़ा रोल प्ले करा, तो वो क्या था एक्सपीरियंस आपका, उसके बारे में बताइए।
1: तो शायद मिलिट्री इंटेलिजेंस में आप वॉलंटियर करते हैं कि okay. मैं इसमें सर्विस करना चाहता हूँ, आपको 2 साल का प्रोबेशन रखते हैं वो।
0: अच्छा,
1: तो अराउंड 10-11 साल में MI में था, तो वहाँ पे मैं काउंटर इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट था।
0: अच्छा।
1: और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, काउंटर इंटेलिजेंस की हमारी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए,
0: ओके,
1: इंटेलिजेंस जैसे होती है उनकी खबर लें, तो अलग अलग डोमेन में, और नॉर्थ मेरा डोमेन था तो उसमें वही नौकरी करी मैंने।

0: ज़्यादा काफ़ी ऑपरेशंस किए हमने, काफ़ी देश में जो जासूस घूम रहे हैं काफ़ी पकड़े।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह से मेन टास्क हमारा फिर ये होता है
1: कि कोई अगर इंट्रूडर है
0: हाँ जी,
1: तो उसका पता लगाना और उसको पकड़ना।
0: या और हमारे जो बेसिकली कम्युनिकेशंस, इंटेलिजेंस का बेस इज कम्युनिकेशन, वहाँ से खबर आती रहे और यहाँ से खबर ना जाए, बाकी सारी दुनिया इसके अराउंड बनी हुई है।
1: ओके,
0: ये दो पिलर हैं।
1: ये दो पिलर हैं।
0: या सो अपना अपना रोल सब प्ले करते हैं। तो उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन थी मेरी कम्युनिकेशंस की,
1: जी
0: स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की, जो अभी मैं पढ़ाता हूँ और फौज छोड़ने के बाद तब से वही करते हैं।
1: जी तो सर, इसमें जो जो साइबर सेल का भी जो रोल रहता है, उस भी वो भी आपने सेटअप किया, उसमें भी आप
0: देखो
1: शामिल रहे।
0: तो 2000 अर्ली 2001-02 में जब नया नया इंटरनेट आना शुरू हुआ था, तो सबको समझ आया था कि इंटरनेट से कम्युनिकेशन अब होगा।
1: ओके,
0: उससे
1: ये वो
0: पहले
1: उस
0: तो
1: जमाने की बात
0: हाँ
1: है।
0: चिट्ठी फोन पे चल रहा था सारा
1: जी
0: काम।
1: जी जी
0: तो उस टाइम देश का, आर्मी का रादर, पहला साइबर सेल पुणे में मैंने
1: पुणे
0: सेटअप
1: में
0: करा था।
1: आपने।
0: मैंने एक दो कोर्स करे थे, स्पेशली कोर्स
1: अच्छा
0: करवाए साइबर इन्वेस्टिगेशंस के, एथिकल हैकिंग के। तो हमने समझा कि ये कैसे है। तो उससे काफ़ी, आर्मी है, आर्मी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भी चीज़ें टेक्नोलॉजी नई आती है पहले पकड़ने की कोशिश करती है,
1: ओके
0: ताकि हमें एक स्टेप आगे रहे। तो फिर हमने साइबर सेल, साइबर पॉलिसी, इस पर काफ़ी काम किया। तो
1: अच्छा
0: वो आज तक चल रहा है और काफ़ी, अब तो बहुत डेवलप्ड है, पूरी डोमेन है। तो
1: बिल्कुल,
0: उस टाइम तो नया नया था
1: नया नया था
0: सब।
1: तो
0: हाँ
1: जाहिर
0: जी
1: है टफ भी रहा होगा उस टाइम पर, उसको सब मतलब स्ट्रीमलाइन
0: हाँ
1: करना,
0: जी,
1: उसको एस्टेब्लिश
0: समझने में
1: करना,
0: टाइम लगता था
1: समझने में
0: कि ये
1: टाइम
0: कैसे
1: लगता
0: होता
1: था।
0: है,
1: जी
0: वैसे।
1: तो सर, अभी ये सब चीज़ें तो हो गई हैं आपकी, लेकिन
0: ये वो वाला जमाना था शायद जब आप किसी से ईमेल मांगते थे, वो ईमेल के साथ पासवर्ड देता था। मैं सच
1: अच्छा
0: बता रहा हूँ। तो लोगों ने कहा पासवर्ड क्यों दे रखा था, फिर वो चेक कैसे करेगा। मतलब लोग धीरे धीरे समझ आई लोगों
1: समझ
0: को।
1: आया
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: भाई ये जो साइबर है ये किस तरह से
0: हाँ
1: काम
0: जी
1: करता
0: हाँ
1: है और
0: जी
1: इसमें कैसे सिक्योर रह सकते
0: हाँ
1: हैं।
0: जी
1: सर, ये इन सब चीज़ों के साथ साथ आप जो हैं ऑथर भी हैं, आपने किताब लिखी है कुपवाड़ा कोड्स, और इसके बारे में जरूर बताइए। इतना सब आपने किया, आप एक डायरिंग आर्मी ऑफिसर, इंटेलिजेंस पर आपने काम किया, काउंटर टेररिज्म पर आपने काम किया, आपको सेना मेडल से और दूसरे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, आपको पीएम मोदी के मिशन इनोवेशन के नेशनल चैंपियन के तौर पर भी आपको सम्मानित किया गया, अब आप ऑथर भी बन गए।
0: जी। तो ये अभी मैंने 1 साल पहले लिखी थी। तो अब अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऑपरेशंस को इकट्ठा करके मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है, गोरखा गैरिसन,
1: अच्छा
0: जिसमें गोरखा यूनिट और कुछ इंटेलिजेंस वाले जम्मू कश्मीर में ISI और टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा
0: तो
1: तो ये एक
0: उसकी
1: स्टोरी है,
0: ये एक पूरी ये सीरीज
1: सीरीज
0: है,
1: है।
0: ये फर्स्ट बुक थी उसकी, कुपवाड़ा कोड्स,
1: ओके,
0: जो कि पिछले साल आई थी और हार्पर कॉलेज के साथ है।
1: क्या बात है। तो
0: तो
1: सर, क्या आप चाहेंगे कि इसको मतलब हम OTT प्लेटफॉर्म या कहीं पर देखें, इसको अगर पिक्चराइज किया जाए, इसको
0: हाँ जी,
1: फिक्शन।
0: इट इज अ वेरी गुड स्टोरी। आई होप किसी दिन इस पे कुछ बने,
1: जरूर सर,
0: क्योंकि
1: जरूर,
0: हाँ
1: हमारी
0: जी
1: शुभकामनाएं, और हम जरूर चाहेंगे कि इस पर अच्छी आपके एक्सपीरियंसेस के साथ, जो इसमें एक्सपर्टीज के साथ जो आपने लिखी है ये, उसको जरूर पर्दे पर, छोटे पर्दे पर ही सही, लेकिन उतारा जाए और हम उसको देख पाएं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया, इतनी अच्छी आपने बातें करी, इतने अच्छे एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर करे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला, और 80वां देश जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो उसकी भी बहुत बहुत तमाम देशवासियों को, हमारे सुनने वालों को, और मेजर मानिक आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सर
0: आपको
1: जाते
0: चाहे
1: जाते, जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, जाते जाते मैं सर आपसे अब ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कम से कम एक आपकी पसंद का गाना जरूर चलाऊं जो आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके दिल से करीब है।
0: तो मैं आपको बताता हूं, जब NDA में थे है, तो एक पिक्चर रिलीज हुई थी बॉर्डर,
1: बॉर्डर, जी बड़ी
0: तो
1: फेमस,
0: उसका गाना था संदेशे आते हैं।
1: जी
0: संडे को दोपहर को हर कमरे में गाना चल रहा था,
1: अच्छा
0: और इस गाने, आई डोंट थिंक फौजी लाइफ, फौजी इमोशंस को इस गाने से अच्छा कोई कैप्चर करता है।
1: क्या बात है
0: तो
1: सर।
0: मैं फर्स्टली आपको थैंक यू, आपके सभी लिसनर्स को जय हिंद।
1: सर, लिसनर्स तो
0: और
1: हमारे अभी भी जुड़े हुए हैं और
0: हाँ जी
1: मैसेजेस आ रहे हैं।
0: हाँ जी और स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच सर आपके आने के लिए। यहां पर मेजर मानिक एम जॉली की पसंद का ये गाना हम छोड़ करके जाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हम सर को जाते जाते जो मैसेज, कुछ एक तो मैं कम से कम पढ़कर सुनाई दूं। सर, हैट्स ऑफ ऑल योर एक्सपीरियंसेस शेयरिंग, विश वन लाइफ वी गेट अ चांस टू लिव 1% ऑफ योर लाइफ, प्लीज शेयर योर बुक फ्रॉम USA न्यू जर्सी। ये मैसेज आया है किसी का, और इनका नाम मुझे नहीं पता लग पा रहा है, लेकिन इन्होंने सर बड़ा दिल से मैसेज
0: या
1: कराया
0: बिल्कुल,
1: आपको।
0: थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट योर मैसेज। जय हिंद आपको भी।
1: और सर ये मैसेज है, सर कैन वी ज्वाइन सीक्रेट सर्विस थ्रू NDA और आफ्टर NDA, ये पूछ रहे हैं सर। समय हालांकि खत्म हो गया, लेकिन मैं क्या करूं,
0: हाँ जी
1: मैसेज
0: हाँ
1: आए।
0: जी जरूर जरूर, आप फौज में जाइए और कुछ भी ज्वाइन करें।
1: और सर ये मैसेज है

0: हेलो सर, एनडीआर एंड आरजेएन मेजर सर, जय हिंद, जय भारत सर। जैसे आप जैसे महानुभाव की बातें सुनकर यूथ बहुत इंस्पायर होते हैं, उनमें देशभक्ति का जज्बा पैदा होता है। आप सदा स्वस्थ रहें। मिसेस धर्म भाटिया, रोहतक से सर ये मैसेज आया सर आपके शहर
1: अरे
0: से।
1: वाह, हमारे शहर से आए
0: जी,
1: भाटिया जी, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद आपको भी।
0: और सर मेजर साहब को विजय कुमार त्रिचुरपल्ली की ओर से जय हिंद और स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। सर विजय कुमार हैं ये।
1: आपको भी विजय जी, जय हिंद आपको भी।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े ये हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजर एम जॉली हमारे साथ थे आज, वेटरन इंडियन आर्मी, सेना मेडल से सम्मानित। और आप सुन रहे थे संदेश सौदर्श शाहिद के साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मॉनसून सत्र के दौरान व्यवधान उत्पन्न करने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी बार बार अपनी मांग बदलते रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण

0: पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश के समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्कन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्कन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा कायदा हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट के अनुसार AQIS एक बिखरे हुए संगठन से विकसित होकर क्षेत्रीय आतंकवादी संगठन बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत कर रहा है। श्री नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ी और युवा और नागरिक शामिल हुए। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Both the Houses of Parliament have been adjourned sine die. The monsoon session of Parliament, which began on the 20th of last month, concluded today after having 19 sittings spread over 25 days. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the fullest use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities. Repeated disruptions affect the trust and aspirations of the people.
1: Earlier, the Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Union Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. The bill aims to make India's mining sector more efficient, investment-friendly and well-equipped to fulfill the country's growing demand for critical minerals. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said that Parliament is meant for debate, discussion and legislative business, but continuous sloganeering and protests had affected the functioning of the House in the monsoon session. Mr. Rijiju said that 12 bills were passed during the monsoon session, but only one of them was discussed in both the houses. He stated that during this session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. President Draupadi Murmu today presented the Sangeet Natak Academy Fellowships and Awards for the years 2024-25.

0: এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ। প্ৰিয় শ্ৰোতা, খন্তেক পাছতে হিন্দী আৰু ইংৰাজীত বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।
1: নমস্কাৰ, আকাশবাণী সমাচাৰ কে সাথ মই বিশাল শৰ্মা। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मानसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मानसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। लेकिन बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया।

0: उन्हें देशभक्ति के नारे लगाए और राष्ट्र के प्रति एकता और समर्पण का संदेश दिया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर गुरुद्वारा माता साहिब देवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। श्री बादल की हालत खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिरोमणि हमले की जांच के आदेश दिए हैं। ये पिछले 2 वर्षों में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। इससे पहले दिसंबर 2024 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अल कायदा ए कायदा ए हिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हो गई थी। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीत लिया है। प्रतियोगिताओं में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन सीनियर भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The monsoon session of Parliament has concluded with both houses being adjourned sine die today. The session began on July 20th and saw a total of 19 sittings over 25 days. In his concluding remarks, Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan expressed concern over the repeated disruptions in the House. He said the floor of the House was open, but the members did not make the full use of the opportunities available to them to raise the voice of the people. He, however, said the House managed to fulfill its core legislative duties by passing and returning 12 bills. Mr. Radhakrishnan informed that the House functioned for only 37 hours and 49 minutes.
2: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes, regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 start questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities. Repeated disruptions affect the trust and aspirations of the people.
1: Earlier, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 was passed by the Parliament, with the Rajya Sabha approving it today. Coal and Mines Minister G. Kishan Reddy moved the bill to further amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju has accused the opposition of running away from discussions in Parliament when the government was ready for it. He said the conduct of opposition MPs is not good for democracy, especially for parliamentary democracy. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Rijiju said discussions were held on only one of the 12 bills which were passed during the session. He stated that during the session, productivity stood at 19% in the Lok Sabha and 39% in the Rajya Sabha. A terrorism monitoring team of the United Nations Security Council has declared that the deadly Red Fort suicide car bombing in Delhi that killed 11 people, the work of Al-Qaeda in the Indian subcontinent, or AQIS. The report by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team on Terrorism to the Security Council said the attack in last November was officially attributed to AQIS. The report said AQIS has continued to evolve from a fragmented group into a regional terrorist organization. It has established logistical and

0: মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া মঞ্চত লাভলীনাই প্ৰদৰ্শন কৰা অসাধাৰণ ক্ৰীড়া নৈপুণ্য আৰু দৃঢ় মনোবলৰ শলাগ লয়। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী মিংমাং বদতিৰ গুলীচালনাৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কেইবাটাও সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাৰ ঘৰ তিৰংগা অভিযান অব্যাহত। ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ। অসমৰ পাঁচগৰাকী শিল্পীকে ধৰি দেশৰ শতাধিক শিল্পীক 2024 আৰু 2025 বৰ্ষৰ সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা আৰু ফেলোশ্বিপ প্ৰদান। বড়ো শান্তি চুক্তিৰ বিভিন্ন দফা শীঘ্ৰে ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী নিত্যানন্দ ৰায়ৰ বাসগৃহত পৰ্যালোচনা বৈঠক আৰু লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লাভলীনা বৰগোহাঁইক সম্বৰ্ধনা। সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। পৰৱৰ্তী বাতৰি 7:10 শুনিবলৈ পাব।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19%, जबकि राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया है कि सरकार तो संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने सदन में चर्चा होने नहीं दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि अपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में। देखिए, बिजनेस अच्छा हुआ है, अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल पर हमला किया गया। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर के गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी मुगत की सीढ़ियों से उतरते समय एक सेवादार ने श्री बादल पर चाकू से हमला किया। उनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले की जांच के आदेश दे दिए हैं। ये पिछले 2 साल में श्री बादल पर हुआ दूसरा हमला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा एकायदा अहिंद AQIS को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमान बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024 और 25 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है। उन्होंने कहा कि कलाकार देश की समृद्ध लोक संस्कृति को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा तथा सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई और मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय

0: करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित। सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
3: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
4: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक

0: उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
1: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल स्पीड अप करा रहे ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तत्पर है। रूस के रोमन बाबुश्किन ने भी ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में भारत की प्राथमिकताओं के लिए समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निगरानी टीम ने दिल्ली के लाल किला के पास हुए आत्मघाती विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले वर्ष नवंबर में इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 100 से अधिक कलाकारों को वर्ष 2024-2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार प्रदर्शन कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
3: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसकी भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए।

0: गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता साहिब दीवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती

उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।